0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य शां।

FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोल्डन सिटी चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 4 जून सन 2026। दोपहर के 12 बजने को है। अब से कुछ ही देर में हमारी ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म है जंगली।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएं, उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में गाया ये गीत। फिल्म है सिलसिला। इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया है शिव हरि ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर सिंह। इस गीत में स्वर दिया है आशा भोसले ने, बोल अनजान के हैं, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म आरजू का ये गीत। इस गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, एक बार फिर लता मंगेशकर के स्वर में ही। फिल्म है अभिमान।

महबूबा जी। हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आपने सुना गीत, स्वर था लता मंगेशकर का, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण उपलब्ध है FM बैंड 101.8 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
3: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
3: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
3: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
3: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है।
3: जी।
1: तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
3: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
3: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
3: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
3: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी।
3: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
3: जी।
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
3: जी।
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
3: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की। खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन है स्कू और थुप्पा।
3: जी।
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
3: जी।
1: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
3: जी।
1: जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
3: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ जरूर कीजिए।
3: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी।
3: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
3: बिल्कुल याद है।
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
3: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
3: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ हाँ।
3: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते, ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती
3: जी।
1: है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है जो एक दर्शनीय स्थान है।
3: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
3: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
3: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
3: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
3: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
3: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
3: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
3: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।

0: भारत अर्थात इंडिया।
1: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
2: Wonderful shot through the deep. The scoop shot, it gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
3: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
1: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
4: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
5: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ, श्याम।
4: क्या अभी आपके पास समय होगा?
5: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
4: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
5: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
4: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
5: अच्छा।
4: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
5: और
4: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
5: हाँ, बोलो।
4: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
5: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
4: 5000 वर्ष पहले?
5: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
4: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
5: अच्छा, ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
4: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
5: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
4: अच्छा।
5: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती है।
4: जैसे?
5: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
4: वैदिक समूह?
5: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
4: भरत? भरत नाम तो हमने सुना है।
5: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
4: भरत, अच्छा तो ये बात है।
5: हाँ।
4: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
4: अच्छा।
5: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
4: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
5: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
4: वो क्या सर?
5: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
4: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है, भला ऐसा क्यों?
5: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
4: अच्छा।
5: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
4: है ही नहीं?
5: हाँ।
4: ऐसा कैसे?
5: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
4: ओ।
5: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
4: हिंदू।
5: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
4: तो फिर?
5: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
4: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
5: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा, जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
4: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
5: अच्छा, कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
4: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
5: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं, वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
5: बिल्कुल।
4: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
5: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
4: अच्छा।
5: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारत वर्ष भी कहा गया है।
4: अच्छा।
5: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
4: वो क्या?
5: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
4: जम्बूद्वीप?
5: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारत वर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
4: जम्बूद्वीप?
5: हाँ।
4: ये नाम भला क्यों?
5: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
4: अच्छा।
5: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
4: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
5: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
4: इतने सारे देश?
5: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
4: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
5: बिल्कुल।
4: ये नाम कैसे आए?
5: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
4: जी सर।
5: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
4: अच्छा।
5: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
4: ओ।
5: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
4: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
5: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
4: ओ,
5: हाँ।
4: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
5: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
4: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
5: बिल्कुल।
4: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
5: हाँ?
4: और हिंदुस्तान?
5: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
4: अफगानिस्तान,
5: बिल्कुल सही,
4: बलूचिस्तान,
5: सही,
4: तुर्किस्तान,
5: बिल्कुल, और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
4: सर अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
5: अच्छा?
4: हाँ, बिल्कुल।
5: अरे वाह, क्या बात है।
4: सर आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम है, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
5: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
4: अच्छा।
5: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
4: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
5: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
4: जी सर।
5: शाबाश। अच्छा आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
4: सबके साथ?
5: हाँ, सबके साथ।
1: तो साथियों कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश
0: भारत अर्थात इंडिया
1: के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
7: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
8: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
9: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
5: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
10: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
5: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
10: हाँ पूछो बेटा।
5: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
10: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
5: लेकिन माँ,
10: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
5: जी
10: जरा वो फूंकनी तो देना बेटा।
5: अच्छा माँ, ये लो माँ।
10: ला।
9: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
5: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
10: क्या मिल गया
5: मुझे? माँ
10: क्या मिल गया? क्या मिल गया
5: मुझे? मिल गया।
10: क्या मिल गया भाई? क्या मिल गया सब? क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ सही क्या हो गया है?
5: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
9: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
5: स्टीफन स्टीफन माँ, माँ सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ
11: इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ, बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
12: कुछ भी तो नहीं,
9: कुछ भी तो नहीं है।
11: ओ नहीं स्टीफन, नहीं, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
9: वो तो है मगर
11: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
9: कहते तो तुम ठीक हो,
11: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें है?
9: हाँ।
11: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
9: हाँ। ये बात तो है, चलो चलो जोसेफ चलो देखते हैं।
11: ठीक है, आओ मेरे साथ।
12: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो,
8: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान

0: मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
1: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
2: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
3: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं।
2: अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
4: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
3: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
4: हाँ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
5: ना जाने क्या करेंगे,
1: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं
5: सकती। लड़का ये कुछ हो गया है।
1: अरे भाई साहब थोड़ा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
2: भाई साहब आ जाइए। अरे आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
3: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
2: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
3: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
2: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
3: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
2: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
3: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर क्यों ले रहा है? अरे कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
5: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
3: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
5: बहुत अच्छा, देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
3: अरे जबरदस्त, अरे तो मैंने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
5: वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
3: अरे अरे हां हां, अरे वो पेड़ों की तरफ। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
0: साथियों ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा।
6: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
7: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पांच दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप का उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में

0: योग को शामिल करना है। प्रतियोगिता में 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। योगासन भारत की यह पहल वैश्विक स्तर पर योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिविजनों सहित 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। वर्ष 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली शुरू हुई। सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए वर्ष 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम की शुरुआत की गई। जैम पर अब तक कुल कारोबार 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज 2 योजना में चयनित गांवों में अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाएंगे। युद्ध की स्थिति में खतरे का सायरन बजते ही ग्रामीण इन बंकरों में शरण ले सकेंगे। इस योजना में श्रीगंगानगर जिले के 68 सीमावर्ती गांवों का चयन किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि इनमें सबसे अधिक 20 गांव घड़साना उपखंड क्षेत्र के हैं। इन गांवों में कम्युनिटी हॉल के नीचे इन बंकरों का निर्माण किया जाएगा। श्री यादव ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य चयनित गांवों को पक्की सड़कों और मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जनाभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में निबंध, नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से वर्षा जल संग्रहण और भू जल पुनर्भरण का संदेश दिया जा रहा है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सरकारी भवनों में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की साफ सफाई की जा रही है। विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल चौपाल के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कल इस अभियान का समापन होगा। इस दौरान जिला स्तरीय समारोह में जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा की 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज कई इलाकों में सुबह बरसात हुई। भीलवाड़ा में ग्रामीण इलाकों में तेज बरसात का दौर चला। वहीं सवाई माधोपुर में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम पणिहारी।

0: मोरी परेशानी पैदा हो जावे।
1: बढ़ जावे सही है।
0: तो अपन चाहो के जो मनुख जिमारो अपन मिलियो है, अपन सोचने ये ताकत है कि आपे
1: बिल्कुल
0: मोरो सुविधा कर
1: मस्तिष्क की
0: सको।
1: क्षमता अपन मनुष्य जीव नदी है, तो मनुष्य ना चीज सोचनी चीज है के भगवान जो को है वो अपन आप रे साथ में ये प्रकृति में बसन आले सारे जीव जंतु और भार दियो,
0: भार दियो
1: तो ये भार ना अपन उठाना है और ये बारे में सोचना है जगह जगह माथे घड़ा अपन सो नहीं लगाई जे घरों घर आप रे घर में
0: अरे
1: दे
0: एक इंसान एक ही
1: एक ही
0: लगावे
1: लगा दे,
0: बस
1: तो घने पशु पक्षियों और पशुओं की तो बात पछेरी बात पहले,
0: पछे।
1: तो पक्षी पंछी जो उड़न आ रहे पशु तो ये हवा चर चराए गलियों में फिरता जो
0: हाँ
1: अपड़ा है उन्होंने बड़े आपो पानी भी जो पाए दो है के टोका ओवर फ्लो वे बड़ा तो वहां सो
0: वो मैं
1: पी पा जावे।
0: पी लेवे
1: हाँ पर खैर ये बारे में अपन सोचना चाहिए थोड़ा, आपो सखियों से ही जपी ले के आप रे सिर्फ घरों में एक को परिंदो लगा दे
0: बस
1: पक्षियों के
0: पक्षियों नो
1: वास्ते
0: तो बहुत है
1: तो बहुत
0: बहुत है।
1: है। पंछियों ना एक आश्रो जो को चाहिए दोने पानी रो वो ना बढ़िया ठिकानो मिल जासे और अपनों भी एक बढ़िया पुण्य
0: अच्छा
1: कर्म
0: गुंजन
1: मिल
0: बहन एक बात
1: जासे।
0: और थे गौर करो कि अगर जे कोई अपने पुण्य रो काम करे, यो तो मैं धर्म पुण्य तो देखो करता रहा, लेकिन कदे एड़ो काम जो आपो पड़ींडो लगायो और चिड़ियों आए झटके में पानी पीवन लगे आपो देख ली, तो
1: आत्मसंतुष्टि
0: एड़ी मन न शांति मिली के थे पूछो
1: बिल्कुल
0: मत। मतलब
1: बिल्कुल
0: मानसिक शांति और आत्मिक शांति जिके नो के वो अपनो महसूस हुए। अगर
1: ए
0: भले
1: तो
0: बहनों ना पे बात कहो कि ऐ थे बल करके देखो।
1: कोई भी काम हो
0: हाँ
1: पुण्य रो भलो
0: पुण्य
1: काम जद भी कदे करियो नहीं तो मन न जीव न अति शांति दे ए जो राफा है नहीं कोनो तक अपने आप पहुंचे।
0: सही बात
1: ए मैं देखियो है और जद
0: देखिए
1: आप पर हादसा कोई गलत भी हुई नहीं
0: तो भी
1: कदे
0: जी
1: भी
0: दुखे
1: तो वो अपने खनको जो को है वो
0: और
1: कई दिनों तक
0: रविजे
1: जावा कोनी
0: रविजे
1: कई दिनों
0: सही
1: तक कौन जावे।
0: वो मोय आत्मा इस तो ईश्वर है, वो ईश्वर
1: आत्मा
0: मोय
1: ही
0: अपन
1: ईश्वर
0: बता
1: है
0: रहे
1: और
0: हो कि आप गलत कर रहे हो
1: आत्मा आपो ने साथ देवे कि आपो की सही करिए
0: बस।
1: उनकी गलत करिए,
0: सही
1: तो
0: बात है
1: सखियो ना कैसा आपो भी यार पुण्य रा काम करो और
0: जरूर
1: आत्म
0: करो
1: ना संतुष्टि दो ताकि
0: जरूर
1: आपो भी बायो राफो है जो कोना तक फुगे और जी सोरो रहे,
0: जी
1: तो ये
0: सोरो। तो
1: जी
0: देखो
1: सोरो
0: आज तो अपन जो बात करी नी इस उम्र तो वास्तव में जी सोरो, पर अपनी पणियारी में जी सोरो रे बेना नहीं लग सके कि आज बेना जी सोरो को कराएगा।
1: बस उन थारी बात ही जो रही थी के थे क्यों और या जी
0: हाँ
1: सोरो कराओ नालो
0: हाँ
1: गानो चले तो सुन सा एक बढ़िया मीठो गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट
3: एक्सप्रेस के यात्री मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: देखो एक कहावत है कुंजन मैन,
6: बढ़ते
5: बात आलो बिगड़े और एक अगली लाइन की दोनों आवे
6: मना तो कौन आते
5: बात आलो बिगड़े चतुर सुधरे अड़ी कुछ है, मतलब जो को बात करे नहीं घनी हमें बात करते करते ठाई कौन पड़े के एक तो समय कद बो जावे नहीं, एक कोई काम जरूरी हुई और जब चूल्हे में दूध चढ़ा दो और बैठा बातों कर लो तो दूध है वो उफन जावे, तो बातों भी थोड़े हिसाब से कर लेना चाहिए। आप भी देखो और बातों में बैठ गया नहीं तो संदेश तो जरूरी सुन लिया। और हमें ये जो उनाले में बढ़ती लायर में टबरों को कोकर रखना कोकर फुसलाना ये भी तो एक चर्चा का विषय है।
6: बिल्कुल स्वभावन चर्चा का विषय तो है। कुछ टाइम पहले तक
5: बच्चों की छुट्टियां आ रही है,
6: बच्चों की छुट्टियां है, बच्चों ने तावड़े में मैंने तुम्हें याद आवे के मोरे घर में चिटकनी ऊंची थी तो छोटी बहन ने नीचे घोड़ी बनाओ थी माथे चढ़ चिटकनी खोल दिया तावड़े में कूदती बाहर खेलन ला रहे एड़ी लाय लगती हमें तो टावरिया घना बाहर खेलन जाओ ही कोनी
5: जाओ,
6: पर हमें की है के टेम एड़ी बदली है के बाहर नहीं जाओ तो मैं भी कौन खेलता टावर और उनको मोबाइल एंड टीवी में जावे बड़ी टावर रही तो टावर ने जो अपने तो थानो दियो ने के अपन नहीं तावड़े में जाऊं देता नहीं तो आप मई बैठ नो के इष्टा चंगान गड्डान कोई नोलान कोडियोन कई ठा की खेलता था
5: गेम खेलता
6: मई बैठा बैठा एक ही जगह बैठा बैठा खेलता।
5: और अच्छा एक खेल तो व्यापार
6: व्यापार है मैंने जो भी है
5: तो वे व्यापार में खेल रो खेल और दिमाग रो दिमाग
6: दिमाग
5: और नॉलेज रो नॉलेज में इतना नॉलेज बढ़ जाते हो कई शहर कई जगह है कई शहर आप तो दूर है
6: वो भी होती जोड़ शहर रहता
5: यानी वे वे जो टिकटों भी होती बाकायदा तो वे में हर शहर रा जो पैसा आता तो वे पैसा सु ठा पड़ती के ए शहर आप सु तो अगुए
6: और वे में वो होता जोड़ता कहता देना पैसा ता लेना पैसा तो टाबरोरी कैलकुलेशन
5: जैसा भी बढ़ती है हाँ।
6: जोड़ बाकी में भी अवल होता के सीखता के हमें ता 5000 में 10000 जोड़ना है हाँ। 10000 में 3500 घटाना तो वो की के उम्र उंगलियां माते होती है चीज पर।
5: अच्छा बचपन एक अड़ी चीज है गुंजन बहन के वो में हणा अपन हणा आप बात कर रहे हैं अपन दूर समझ में आवी थोड़ो कहता देना कहता लेना ए शहर ए टिकट ए हारी है जीत टाबर है जो फटाफट पकड़ ले हर चीज ना
6: खेल में जो चीज है वेनी उमे ना और तेजी से समझ में आवे टाबर
5: तो मतलब आपे तो हूं ये सोचे आज पे चर्चा करो आप और बहनों सु के इयो दिनों रे महीनो अपे घर रे मोए बैठ के टाबरों नो क्या खेल खेला सको।
6: बात बहुत बढ़िया करिए थो और क्योंकि ये गर्मी में एक तो टाबरों ने अपनो बाहर भेजना कोनी, पहले तो आपो ये कहता के उन्हें बाहर खिलाओ फिजिकल कसरत होनी चाहिए टाबरों री, पर हाले जो टाइम चल रही है मैं तो बाहर भेजने भी को मतलब
5: है यानी साकले 10 बजे तक खेले नहीं आराम से खेले
6: 10 बजे तक खेले
5: और 6 बजे के बाद में खेले बाहर
6: दिन भर घर में रहे तो दिन भर घर में रहो मतलब ए कोनी के आपो मोबाइल एंड टीवी जला दो ना आपो आपरे काम में अड़ू जोड़ा रहो तो ये में की बे के टाबर घर में रहने तो कई टाइम मायतो नो भी उन्हें देनी चाहिए और उन्हें एक प्रयास कराना चाहिए कि आपो कई तरीके से उन्हें बंतल करा सको और मन लगा सको और साथ

0: थी, कोई कोई दिमागी कसरत भी हो रही होती रहे।
1: भाई अपो देखो एक हमारे दिमाग में आई के जो नवे तरीके रो जानो, आजकल बच्चों ने पढ़ाई रो थोड़ो ज्यादा रे, कोई कोई बच्चों ने ज्यादा रे, कोई कोई बच्चा चंचल वे तो थोड़ा उबे, पर हाँ जो मान लो अपो एक अपर चार टाबर है घर में, उन्होंने पन्ना जलाए दिया, पेन जलाए दी, हमें उन्होंने यो सवाल दे दे के अ मथे कया शहर और नाम में लो लिखू, ए ओ
0: बात सही
1: खेल
0: है, खेलो यो।
1: ब मथे कहे पशु और नाम में लो लिखू, या अपर घर में कितना आपो सदस्य हमारा नाम लिखो, तो ए यो करके समय मतलब निकल भी जावे और टाबरो जो राइटिंग भी जम जावे, और कमर ना मतलब है कि घर और महीना जब छोया में वो बैठे ही तो
0: कठे।
1: उन्होंने दौड़ नहीं कुन में कि भाई बाहर जाऊं पफट देना, बाहर जाऊं रोक, एक जो खेल बनोड़ा है जो मैं आपको कहूँ ना व्यापार है जो एक चाइना चक्कर करके भी खेल
0: चाइनीज
1: अभी आम,
0: चक्कर
1: तो
0: तो
1: जो भी है बाजार
0: हाँ
1: में
0: है,
1: मिले सब,
0: मिले मिले
1: कैरम
0: बाजार में,
1: बोर्ड है सबसे बढ़िया,
0: कैरम बोर्ड है, शतरंज है,
1: शतरंज है सबसे
0: सांप
1: बढ़िया,
0: सीढ़ी लूडो भी जा तो सब बताई जाए।
1: फोन
0: हमें लूडा भी जा तो फोन में ले लिया डाबरा, फोन में खेले,
1: में नहीं
0: पर
1: खेला
0: फोन में
1: है
0: खेलने आदत छोड़ा है कि जो
1: हकीकत में है
0: हाजिर
1: नहीं,
0: हाजिर
1: हाँ
0: खेल है नहीं, वो हाँ
1: वो खेला
0: खेल
1: वो
0: खेले,
1: खेला है,
0: वो खेले है।
1: तो उवे में की वे के टाबर और समय अच्छा, ओ बच्चों की रुचि कै वक्त में कै में है ये भी तो देखे,
0: है भी
1: हमें
0: है।
1: जाना उरी लूडो खेलने नहीं रुचि है ना, पे आपे वो कागज कलम जला दो तो वो को नहीं लिखे, या उरी रुचि है कैरम बोर्ड खेलने नहीं आपे वो कोई के ना ले चाइनीज चक्कर खेल तो वो को नहीं
0: एक
1: खेले,
0: एक है भी बात होया करेगी, अपो री रुचि अटाबर री रुचि में मेल खावे नी भी खावे,
1: हाँ
0: लेकिन उवे में की वे के कोई खेल नो खेलाओ नी, रोचकता आ जावे नी, तरीको बदल
1: तरीको
0: जावे नी
1: बदल जावे
0: खेलाओ
1: सही
0: नो।
1: बात है,
0: उवे में कोई कंपटीशन रख दे या उवे में एक इनाम दे देवे के हूं आज को की जीत से उवे
1: हाँ
0: नो एक चॉकलेट
1: चॉकलेट दे दी
0: प्राइज,
1: सा
0: तो की है
1: सही,
0: के एक टाबर नो लालच आ जावे, एक उवे में रोचकता आ जावे, उरे अलावा तरीका भी वे खेलाओ ना तरीका। मैं एक आपो साधारण बात करो, अंताक्षरी एक केड़ो खेल है,
1: ये भी बढ़िया खेल,
0: बढ़िया खेल है
1: बढ़िया
0: नहीं,
1: खेल है
0: लेकिन अंताक्षरी में हमें इतना गाना हो गया है कि आपो सिर्फ आखिरी अक्षर सो खेलना शुरू करो नहीं
1: हाँ
0: तो बाप रे कोनी,
1: बाप
0: कदे खत्म
1: रे
0: कोनी, और
1: चले चलती
0: निर्णय
1: जैसे
0: कदे आ ही कोनी।
1: सही है
0: तो मैं ये में एक नवी खोज करी के
1: हाँ
0: जो एक शब्द है पानी,
1: ठीक है
0: ठीक है, तो बे तीन टीमों जो कोई बनाए दी,
1: हाँ
0: घर आला आपस में बैठ
1: बैठ
0: खेले
1: के
0: ताकि
1: हाँ
0: टाबर भी बड़ा भेड़ा आपस में जुड़ोड़ा रहे और बंधन
1: और
0: भी बड़े
1: बढ़िया है
0: और
1: दिमाग
0: बढ़िया
1: में
0: है।
1: और बढ़िया
0: तो
1: है
0: वह में एक शब्द लियो के साथ पानी शब्द ले लियो, हमें पानी रो एड़ो गीत थोनो गाने, एक टीम नो गाने जगह में पानी शब्द आपो रहे,
1: आना चाहिए
0: बीजोड़ी टीम भी वही शब्द सुगीत गासे, तीजोड़ी जब तक पानी रा गीत आवता जासे जब तक वो गावता
1: वो गाना
0: रहसे,
1: चलतो
0: पछे वो
1: रहसे
0: दिमाग घुमा के पानी के में आवे पानी के में आवे, यो करके
1: सही
0: करीब 15-20 गाना निकल जावे पानी रा आराम से,
1: हाँ
0: जता पर एक याददाश्त में हो सके।
1: आराम से
0: सो
1: निकले
0: उवे
1: हाँ
0: में उरे बाद में जिके अगली एक जनो के का हमें मोरी टीम नो को ना, तो और अगलो के मोना आवे तो के इयो ना नहीं आवे तो इयो और पॉइंट वो ना मिल से,
1: सही
0: तो
1: है,
0: एक ही एक रोचकता लाओ ना
1: रोचकता हो
0: तरीको है,
1: जिज्ञासा भी नहीं,
0: जिज्ञासा भी वे
1: और
0: प्रेशर
1: यहाँ सोचन दिमाग में से प्रेशर गदई हर सब
0: गदे
1: मेंबर के भाई मैं क्यों खोजो,
0: कयो को
1: ए
0: जो
1: अच्छी बात है यो
0: एक
1: कर सके
0: ये तरीको हो सके, ये में घना ही तरीका
1: बे,
0: है।
1: या में जो था पानी रुको जो पानी की जगह आना फूल चुन लो,
0: फूल
1: फूल चंद्रमा
0: चुन्नो
1: ले लो, नींद ले लो,
0: कुछ
1: रात
0: भी
1: ले
0: हो
1: लो,
0: सके,
1: दिन ले
0: कुछ
1: लो,
0: भी
1: कोई
0: हो
1: भी
0: सके,
1: शब्द
0: कोई
1: ले लो
0: भी शब्द है, हमें ये मैं भी तरीको कर सके कि जो आपको कोई नहीं विलोम शब्द
1: हाँ
0: है, तो मैं कहोगे रात ये रो जो को विलोम शब्द है वो सुगानो को, तो
1: अच्छा
0: रात रो विलोम शब्द अपन उठाएगी कि दिन, तो
1: दिन
0: दिन सुगाओ। हमें कई बार की हुई कि कोई गाना ऐड़ा हुई जो को अंग्रेजी अक्षर से चालू हुए, कई बार ऐड़ा हुई कोई
1: ऐड़ा
0: गाना
1: हुए
0: ऐड़ा
1: हाँ
0: भी हुई तो अंग्रेजी अक्षर से चालू हुए, तो बैठा बैठा बना वो ना हिंदी रूपांतरण करियो और बच्चा
1: हाँ
0: कहोगे ये ना जो को अंग्रेजी में कहे वो गानो गाओ, तो एक ये
1: सही
0: कि
1: है,
0: एक एक मतलब
1: रोचकता
0: उदाहरण
1: पैदा
0: है कि
1: हुई,
0: रोचकता पैदा
1: रोचकता
0: हुई
1: पैदा हुई
0: यीशु और जुड़न आला और गहरा जुड़े, और उरे बाद में मोरा खुदरा दिमाग घूमे कि हमें आप ये में और की नवीनता ला सका,
1: भाई
0: तो
1: देखो
0: रचनात्मकता ज्यादा आवे नहीं कोई कॉम में, तो वो कॉम और बढ़िया
1: और
0: हो
1: बढ़िया भी
0: जावे और
1: लगे
0: वो में
1: और
0: बच्चा इंक्लूड भी वे मतलब शामिल हो जावे वो में
1: शामिल हुए
0: बच्चा और मन सुजत शामिल हो जावे नहीं, तो आनंद री
1: आनंद
0: प्राप्ति
1: भी
0: ज्यादा
1: भाई
0: आवे,
1: आनंद बच्चों रो क्यों बड़ों भी तो आवे,
0: बड़ा भी आवे
1: पर एक
0: बिल्कुल
1: दिन मैंने
0: आवे।
1: और भी थोड़ा बात बताई, इसके जो हणोरी जो परिपाटी चल रही है हणोरो जो को युग चल रहा है, मैं घर में भी बच्चा एक बच्चों भी घड़े घरों में एक बच्चों जो है तो वो ना खेल रहे पका बच्चों के सुमर से,
0: ये भी
1: या
0: बात
1: कोई भी
0: सही
1: बच्चा
0: है,
1: अभी
0: सही बात है।
1: अच्छा, हमें माताओं है जो महिलाओं है काम करे बार एक दो हद कर दो 3 बज जावे तो पछे भी नहीं अलग से गमे सु
0: मन
1: आटा
0: तो
1: बंद करो सु,
0: कूलर देखी
1: तो
0: जे
1: टबरों नो दोष देनो वृथा है
0: वृथा है, सही
1: के
0: बात
1: टबर
0: है।
1: मोबाइल देखे टबर मोबाइल, अरे टबर मोबाइल नहीं देखे तो की करे, एक तो थे वो वक्त कौन दो एक उरे साथ में खेलन बगा
0: बच्चे साथी बनी ना वक्त है ना साथी है तो बच्चे
1: अच्छा अपा जिके समाज में बैठा हूं जिके पड़ोस में बैठा हूं हमें आज रे युगरी सोच इतनी हो गई के जिको बच्चे रो घर है वो उबे में रख से ये कौन पाड़े में भी बच्चा है तो तू घर जा खेल
0: भेड़ा हो के खेले हां
1: बिल्कुल भेड़ा हो के जो बच्चे ना बीजे घर भेजनो पसंद कौन करे
0: कोई ए अपो के में भेजनो पसंद कौन करे कई जगह अड़ो भी है कि वो खैर घर में आना पसंद कौन करे तो ये कारण घरों घर दिमाग में एक मानसिक वृत्ति आ गई है कि आपो ना खैर घर जाना कौन
1: जाना इसको नहीं
0: तो ए भावनाओं जो है नहीं परिवर्तित हुई
1: तो ए भावनाओं कौन बदल से
0: ए अपो लुगाया
1: एक माँ बदल से एक माँ बदल सके
0: और घर ही गृहणी जो है नहीं ए उमरी भी हमें देखो कुछ खोड़ी लाए और आदत हुई जो आप महिलाओं की बात करें नी कई महिलाओं की खोड़ी लाए आदत मैं टाबर बेड़ा हो से तो बिखेरो भी कर से रमतिया भी रम से मोटो आदमी तो रमन सरो थे नहीं तो रमन से बात
1: हूं रोज कोई
0: कि टाबर तो बेड़ा हो से तो रम से बिखेरो कर से रमतिया कर से ओ नहीं कर से तो कौन कर से लेकिन कई जगह लुगाई रे खोड़ी लाए उन्होंने ये स्वभाव बिखेरा कर दिया ए हमारे घर आवे हमारे टाबर ने बिगाड़े अरे कोई कह रहे टाबर ने कोनी बिगाड़े बच्चों आपरी वृत्ति खुद लेके पैदा होवे उए में जितनी मानसिक सोच है मेरी जिको क्षमता है उए तक है
1: वैसे होवे में
0: उए में वो रहे से कोई कहनो कोनी बिगाड़ सके कोई कहनो सुधार कोनी सके हां सुधारण नो प्रयास जरूर कियो जाए सके
1: सुधारण में हो सके गुंजन में अगर जे कोई बच्चों हमें जो कम बोले कम खेले या घणो और भी बच्चा भेड़ा एड़ा आए जावे तो वो ना देख के वो बच्चों
0: सुधर सके सही बात है सुधर तो सुधार ही तो गुंजाइश वे पर मनोकुल लगे कि बिगड़न नहीं सुन
1: ना,
0: गुंजाइश
1: ना, ना, सवाल
0: भी बच्चा बिगड़े को नहीं बिगड़े बच्चा आप खुद रे दी संस्कारों सु
1: सही बात
0: और आप परवरिश सु कदे बच्चों बिगड़े और सुधरे सुधार रही तो गुंजाइश रही लेकिन बिगड़े नहीं हुए क्योंकि आप उम्र में जड़े संस्कार भरसो नहीं वो बच्चों ओड़ी चीजों ना आपकी तरफ आकर्षित कर
1: वो तो एक कच्ची मिट्टी है देखो कच्ची मिट्टी ना कुंभार जद घड़े चाहे वो मटकी घड़े चाहे घड़ो बनावे चाहे मटकी तोड़िया बनावे चाहे ढकनी बनावे कुछ भी बनावे वो बना सके तो एक माँ एक तरीके रो कुंभार है वो माँ है जिको आपरे बच्चे नो कई भी रूप आपरी बनती कोशिश में तो बढ़िया से बढ़िया तैयार करनो चाहे पछे तो देखो भाग्य मथे भी हुई प्रकृति मथे भी हुई घर रे माहौल मथे भी हुई पर अपन ये चाहिए कि अपे जिको अपोरी परंपरा होती उन्होंने जीवित रखते थके ए जिको ये गर्मी रे दिनों रे महीनों घर रे मोए जिको अपे खेल खेला है सको टावरो ना उन्होंने जरूर खेलाऊ और साथ में अपे खुद बैठो तो खेल पूर्ण रूप से खेल पावे बच्चा क्योंकि वो ना खेल आवे भी कोनी हमें उनका खेलो खेलो खेलो खेलो अरे खेल से कि वो ना ध्यान भी कोनी इस वास्ते मारी वो कोनी बाप भी बैठ सके काका हुई बुआ हुई घर में मौज परिवार
0: दादा दादी दादो दादी तो सबसे बढ़िया है वो साथ जेड़ो तो बच्चा वास्ते कोई साथ कोनी है दादा दादी जेड़ा कोई मित्र कोनी है और मैं तो एक परिवार भी देखी हुई जो बाहर मतलब बड़े शहर में महानगर में रहे तो महानगर अपोरे तो बड़े भी घर कना गनी है महानगरों में तो एक बिल्डिंग वालों बीजे बिल्डिंग में कोनी ओळखे बिल्डिंग वाला आपस में एक बीजे नो कोनी ओळखे तो वो में तो जिके घर में फ्लैट में रहे पड़े मोर वास्ते तो उतो दायरो
1: संसार उतो जे
0: उतो संसार है तो वे में भी रह के एक परिवार है बुजुर्ग दादे दादी मतलब दादी रो तो नहीं कहो दादो ज्यादा हुआ मते बच्चों मते तो के बच्चों ना ले बैठतो और जितना प्राचीन गेम अपना जो इंडोर गेम भी आपको बात करो नी ओ होने बैठा है कि बेटी ने जिता घर में हमें आज तक घना तो वही कोनी बे बे छोरो रा तीन टाबर था तीनों टाबरों ना ले बैठतो उन कदे गड्डा खिलावनो कदे वो नष्टा चंगा खिलावनो कदे वो बीजो नोनो ला जो बॉल दड़ी ना वो मारता नी
1: बीत मते मार स्वामी बखो
0: करता जो करता अरे थोड़ी घनी जगह में वो मेणियरी माल दड़ी रो मल गोटो तो बाहर खेलता वो बस घर में ही मेणियरी मेणियरी नी
1: कपड़ा री बनाता
0: के बीजो ना घर में थोड़ी सी
1: हमें जो गुंजन में ना गड्ढा खेलता अगर जे अपन हणो हणो बैठ के सोचो नी तो वास्तव में लगे कि वो गड्ढों रे माध्यम से अपोरी जो नी पकड़न दी क्षमता अपर जो को इस आगे ने तीर मारो आप तो वो इशारो वे ने तीर पकड़ो को कर तो गड्ढे नो यो पकड़न दी जो को क्षमता होती तो वो में देखो हाथ और अपर प्रैक्टिस होती दिमाग री प्रैक्टिस होती नजर एकदम टिकोड़ी रहती वो मत के आउट नहीं पाओ
0: और ए जो को अंगली और अपर मांसपेशियों
1: में
0: खिंचाओ तो मांसपेशियों बराबर कसरत रहो उसी तो इंडोर गेम भी यो गुणी के अपनो क्रिय निष्क्रिय करे इंडोर गेम भी अपनो सक्रिय
1: करे
0: अपरे शरीर ने कई अंगों ने सक्रिय करे भले मानसिक रूप से करे चाहे शारीरिक रूप से करे लेकिन एक तरह से आप में रचनात्मकता लावे।
1: ये गौर महीनो में चौपट गेम है, चौपट।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए। हाँ देखिए,
1: तो वो चौपट खेल एड़ो है के दे पारा भले देखो इयो दिनो रे महीनो साकल 9-10 बजे तो कम हो जाऊं, तो अगे तो हमें घणो करो तो 11 बजे गौर महीनो घणो मोड़ो को है, क्योंकि साकल रोटी करी फटाफट खाई पछे चोरो में कूड़ो आवे तो हमें तो है कोनी पठियाळो कमरा हो जे भी आराम से बैठ सके आदमी। तो चौपट अगर अपजी 12 बजे खेलनी भी शुरू करन तो 5-7 बजे ठाई कम पड़े, एड़ो बढ़िया खेल है। तो अपन चाहिए अपो जो हमें चौपट खेलो चार जनी मिलके घर में तो अपोरी बच्चियों है वो सीख से। हमें अपे खुद ही खेलना बंद कर दियो, कोडियां लावनी बंद कर दी चौपट बना। अच्छा वो में लगनो कहीं को नहीं, अपन अंगनो हूं तो कच्चो वो में से सेड़ी सुमे बनाती हूँ।
0: अच्छा
1: वाई सफेद कलर की सेड़ी आवे वो सुलाइनो बनाए और 8-8 खंड बनाए और वो ना बनाए के और पछे कोडियां और हमें सारी बनावनी पड़ती है जिके ना गोटी को ना। तो हमें तो बजारों में आवे गोटी नहीं तो की है जो चार बाठा एक जनी का हो गया, चार चूड़ियों का टुकड़ा कर एक जनी का रख दिया, एक जनी का चार बीजे कोई कोई चना लाए रख दिया चार।
0: तो वो थे चौपट को भी हूं वे नष्टा चंगाज को है बड़ी ओई। अच्छा। जे हूं दाना है खेल वे में ही जोता का चार यहां चौकड़ियों करोड़ी होती चार एक खूणा खूणा ना मतलब चार यहां किनारा होता ना चारों में चार
1: पे ठाकुर जी लागे थे
0: देखो तो लूडो ही जे अच्छा। तो हमें लूडो हो ओ आगे हमें अंबी का चार होता जो ना आधा कर ओ जो का पिस्ते वाला छिलको ना का कोडियो ना उंदी सुई करना ओ इस खेल है। एक हो तो शेर बकरी ए थोड़ी याद है, शेर
1: याद है, याद है हमें याद है।
0: पुराना घर जो भी अपने शहर का गलियों का घर देखो ना पुराना पुराने भाठो माते उकेरोड़ा
1: उकेरोड़ा
0: उकेरोड़ा है खेल। तो ए मतलब अपना परंपरा है
1: ओ तो शेर लावे बकरी चाऊ माऊ की एड़ी ना नाम भी तो लिखी है तो सही है आ तो मुझे याद रहे।
0: तो देखो पुरानी बातें बचपन की बातें याद करके लगे तो प्रसन्न सुभाव तो यो पुरानी बातों से बच्चों को भी जोड़ के रखो है ना पुरानी
1: जोड़ के रखो तो बच्चा सीखे
0: सीखे और ए जो अपनी विरासत है नी ए आगे से आगे बढ़ोड़ी रहे से कभी खत्म को नहीं हुए अगर आप जोड़ के रख सो बच्चों से और ये ना बता के रख सो। प्राचीन गेम है ये रे साथ साथ ही आजकल तो इंडोर गेम
1: घने तरीके है जरूर खेलावे टाबरो ना उसे फायदो ही है।
0: दिमागी कसरत
1: होसे देखो बेना खुद भी जब थक जावे नहीं तो बैठे और आपरा गेम भी जो आप आना चौपट बतायो चौपट खेल सके कैरम बोर्ड खेल सके बीजा भी गेम खेल सके खेले
0: और टाबरो ना सोशल मीडिया रो युग है जके में तो आप सर्च भी मारो नहीं एक तो अपन घणे तरीके रा इंडोर गेम देखी छे कई कई तरीके रा
1: और जितो हो सके मोबाइल सु टाबरो ना यूं छुट्टियों में आगो रखे
0: मोबाइल सु आगो रखे और टाबरो ना नए नए तरीके रा अलग अलग तरीके रा रचनात्मकता रा खेल खेलाओ
1: पर वे साथ साथ में गीत भी आप रो सुनावे जो आप सुनावे नहीं राजस्थानी बीजोड़ा गीत नहीं सुना तो टाबर ना कम से कम सुनान में तो आवे के मोरल लोक गीत है
0: बात ए भी बात एकदम सही है और तो सखियों ना कहिस के ना अगर थोरे कने बच्चा बालक बैठा हो तो ना आप और गीत जरूर सुनावे।

0: वाह वाह गुंजन बहन, ये तेरा फूट सुनायो जी सर हो गया। देखो रुके बातों इसकी आज तो, पर ये गर्मी में सब बातों सही है, काम करो या करो वो करो, लेकिन गर्मी रे बचाव रे बगा कोई एक अधी चीज बताओ ताकि वे गर्मी से राहत मिल सके अपन खुद ना भी और बच्चों ना भी।
1: देखो जदा आप अति देर से देसी बातों कर रहे हो तो ये
0: हाँ
1: देसी बातों में बड़ा एक देसी चीज ना जोड़ दो, तो
0: अच्छा
1: ये गर्मी में अपन फायदों भी मिल जाए और अपनी देसी चीज है जिसके शारीरिक स्वास्थ्य लाभ भी अपन मिल
0: वो
1: जाए।
0: जरूरी है।
1: तो ए है देसी चीज अपन सब जगह देखो और अपन वास्ते अपन ये सबसे चाहती चीज है नींबू। ए
0: ओहो
1: एक नींबू
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: गुणकारी और गुणोरी खौन
0: कौन
1: है।
0: है, सही बात है।
1: ए गर्मी में सर्दी में कोई भी मौसम में नींबू रो उपयोग कदे नुकसानदेह वही कोनी।
0: शरीर बगा तो मतलब रोम बोण है, सही
1: अमृत
0: है।
1: अमृत है नींबू तो, हमें वो शरीर में थे खाए, चाहे वो ना पियो, चाहे वो ना खाओ और चाहे वो ना चमड़ी में मलो,
0: चाहे अचार बनाओ,
1: चाहे अचार तो खाओ नहीं, बाद में तो अचार
0: ये
1: आई
0: अचार
1: क्यों।
0: एक अलग चीज हो जावे, पर सबसे पहली बात तो गुंजन मैंने है हणोरे आज रे समय में के सबसे पहली चीज है कि थे नींबू पियो
1: नींबू पियो
0: हणो।
1: बिल्कुल
0: इन दिनों में अपन पेय पदार्थ की ज्यादा जरूरत है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अपने शरीर में पानी जावनो भी जरूरी है, और वे पानी के साथ साथ में अगर अपने नींबू ले रहे हो तो अगर अपने थे गौर कर लो कि एक गिलास अगर सिकंजी आप पी लो नी सुबह 9-10 बजे तो इतना शरीर में आधार हो जावे कि पूछो मत। शरीर में अपन खुद ना महसूस हुए कि ना थकावट कौन लगे, घबराहट कौन लगे और गर्मी भी कौन लगे।
1: नींबू की करे एक तो अपर शरीर में जो आप कोई नहीं के पानी की कमी हो जावे, जो
0: हाँ
1: डिहाइड्रेशन की बीमारी जो आजकल गर्मी में
0: हाँ
1: ज्यादा हो
0: हो
1: जावे,
0: जाए
1: तो नींबू की वे के शरीर ने तुरंत नींबू शक्कर और ग्लूकोज नींबू जो को मिल के जो अपर शरीर में जावे ना तुरंत ग्लूकोज रो काम करे शरीर में।
0: शरीर में
1: आप
0: एकदम
1: जो
0: घुल
1: भी
0: जाए।
1: शरीर में खावा है वो अंत में ग्लूकोज में रूप में परिवर्तित हो जावे,
0: हाँ
1: तो ऐ सीधो ग्लूकोज अपर शरीर में मिल जावे और तुरंत एनर्जी मिल जावे, ताकत जो को चाहिए शरीर में वो तुरंत मिल जावे। बीजो की वे नींबू रोग प्रतिरोधक क्षमता में सबसे अविश्वसनीय है।
0: ये तो देखो पहले है ना कोरोना जो हुए तो नहीं,
1: हाँ
0: वो
1: वो टाइम
0: कोरोना के टाइम है
1: अपन
0: समझ में आ गए
1: आ
0: तो
1: गयो तो,
0: के शरीर में इम्यूनिटी होनी बहुत
1: और
0: जरूरी
1: ए इम्यूनिटी नींबू देवे अपन।
0: है।
1: ये नींबू ना रोज खावना विटामिन सी से भरपूर होया करे नींबू, और रोज नींबू रो सेवन करण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बने। और चिकित्सक भी ये सलाह देवे कि अगर थोड़ा बच्चो या थे खुद नींबू खावा या नींबू ना कोई भी रूप से लो है तो थोड़े शरीर में नींबू की करे आप देखो नहीं क्या ना आप मेहंदी लगाओ मार बाला में तो
0: हाँ
1: आंवले बिजरी तो हाथ काला काला हो जावे, और
0: हाँ
1: वे काला काला माथे अगर थे नींबू
0: नींबू
1: रगड़ो
0: लगाओ तो
1: तो वो
0: साफ हो जाए,
1: साफ हो जावे,
0: कपड़े रो दाग भी उतर जावे
1: क्योंकि
0: नींबू।
1: वो की करे के शरीर में से गंदगी ना निकाले,
0: अच्छा
1: हाथ
0: अच्छा
1: री गंदगी जो आप देखी गए सफाई करने काम करे। तो आप जब नींबू पियो ही नहीं तो ऐ शरीर की आंतरिक
0: मौली सफाई
1: सफाई
0: करे, कितनी
1: करे,
0: बढ़िया
1: ऐ
0: बात
1: शरीर
0: बताई
1: में
0: गुंजन
1: से
0: मैंने।
1: आंतरिक गंदगी ना बाहर कटे, और शरीर में से जो भी कचरो जो चुके रूप में भी अपने
0: हाँ
1: शरीर में
0: हाँ
1: रहा करे गंदगी वो ना बाहर निकाल के शरीर से बाहर फेंके, और शरीर ना हाइजीन रखे साफ सुथरो रखे कीटाणु मुक्त रखने काम करिए।
0: भाई देखो गुंजन मैन के ए बात तो सब न ठाए के नींबू फायदेमंद हुई, ठीक है। हमें हणो जो को मौसम है ये में तलब हुई इंसान ना ठंडक री,
1: ठंडक रही।
0: तलब
1: हाँ
0: हुई
1: सही बात है।
0: तो जद तलब हुई नहीं जद वो चीज आलस छोड़ के बन से, और हाँ
1: सही।
0: नींबू बहुत मात्रा में मिल भी रहे, और ज्यो ही ठंडक हुई तो मैं कौन माथा
1: कौन
0: फोड़ी करे।
1: बनावे सही
0: तो
1: बात
0: इर बगा ये दिनों रो जरूर फायदा उठावे और
1: है।
0: ज्यादा से ज्यादा नींबू रो सेवन करे ताकि अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता थी बताए रहे हो वो भी हो जावे, और अपने गर्मी से भी बचाड़ा रहा, लू से भी बचोड़ा रहा, और कई तरीके आगे जो कोई कॉम रिजु को क्षमता, देखो कॉम तो हर घर में होगी जी। अच्छा कदे कदे एक ए भी है कि मावा हूं देखो कि सुबह सुबह टावर और लारे ले फ्री गिलास ले ले, दूध पियो दूध
1: दूध
0: पियो
1: पियो।
0: दूध पियो जरूरी है, दूध पिए जी। पर हमें गर्मी में कदे कदे कदे बच्चों तत्व हो जावे नहीं भी इच्छा हुए दूध पियो नहीं, तो वे जगह अगर बच्चे ने आप सिकंजी पिला दो तो वो भी वो दूध रे जितो उसे मले हूं सोचे ज्यादा
1: गुणकारी
0: बत्तो
1: गुणकारी बिल्कुल। और
0: गुणकारी
1: एक
0: है।
1: एक और चीज जवाब भी मैं देखी है कि नहीं कुछ घरों में की है कि हम घड़ी घड़ी कौन बनावे
0: हाँ
1: सिकंजी, तो ये रो भी एक आलस रहा करे, हालांकि
0: हाँ
1: ताजी चीज रो तो और ताजी चीज कर सके, लेकिन वो
0: हाँ
1: रो एक रूप ऐ भी हो सके कि अपने जो शक्कर होया करे ऐ में होना देखी थी कि
0: हाँ
1: दोने वाली शक्कर जो कोले में अब शक्कर
0: हाँ
1: सिकंजी में खाते जाओ तो
0: हाँ
1: वो शक्कर में बटकी भरियो नींबू रो रस
0: मिला दे
1: मिलाए दे, और वो ना पाछो धूप में नहीं छाव में सुखाए दे,
0: हाँ
1: तो वो किए कि वो में सो नमी निकल जासे,
0: निकल
1: और
0: जैसे।
1: पछे वो पाउडर ना पीस ले वो में थोड़ो कालो नमक थोड़ो सेकड़ो जीरो
0: अच्छा
1: और और कोई मसालो आप घर न चाहो तो वो पुदीनो थोड़ो सिक बुरका दे सूखो पुदीनो और उना पीस और उना डब्बी में भर रख दे तो तुरंत ग्लूकोज रो काम करे चमचो भरियो पानी में घोलियो और झट पियो क्योंकि वो पिसोड़ी वे पिसोड़ी चीज वे तो घोल भी झट से जावे और टाइम भी बने फटाफट बन जावे
0: और एक नवी चीज भी हो जावे
1: नवी चीज भी हो जावे तो एक नींबू रो सेवन करण नो एक नयो तरीको हो जावे कि ये तरीके से भी आपो फटाफट
0: मु जरूर करी सु
1: बिल्कुल और बहुत बढ़िया तरीको है और ये ना आजकल तो सोशल मीडिया में एड़ा घना तरीका आवे जिके तरीके से आप इंस्टेंट कोई चीज ना बनाए सको और तैयार करके पहले रख दो और तुरंत आप उपयोग
0: में ले सको कहो ना मतलब है कि ये बढ़ती गर्मी रे महीनो नींबू रा घना सारा फायदा है तो आप और बहनों ने चाहिए कि देखो घर में छाय भी हुई
1: एक और ये मैं जोड़ी कि ये मैं एक और चीज कर सको चुकंदर बाजार में खूब आया करे
0: अच्छा
1: चुकंदर नो किसके वो भी ये रे बड़ो सुखाए देवे चुकंदर अच्छा। किसोड़ो चुकंदर सुखाए दे यहाँ ही और पचा हुए नो भी ये बड़ो पीस लेवे तो वो लाल रंग रो रूप आ जा से सिकंजी रो गुलाब की शरबत वे जो देखने में लग से और चुकंदर तो फायदा आप सब ना ज्ञान है जो कितना फायदेमंद हो जाए तो है एक और बढ़िया रूप निकल के समय आ
0: भाई वो तो म्याली वाली बात तो अच्छी नहीं है वो तो हर पणियारी में बात घनी सीख तो बोला जा कि नर तो हुनर नहीं तो खर
1: नहीं तो खर बराबर
0: तो अगर कोई हुनर री चीज अगर घर में एक महिला एक माँ कोई नवी चीज करे कोई हुनरबंद चीज काम करे नहीं तो वो सु घर मायत भी खुश हुई और टाबरों ने भी उत्सुकता हुई और घर वाला मनखो ना तो हो जाए ना देखो प्राउड हुई मन भी ना मैं लुगाई होशियार है बढ़िया चीज बना रही है तो ईर बगा आप होशियारी जरूर बतावे और ये गर्मी सु बचन रे बगा अड़े जो सुखद चीज है जो बढ़िया चीज है
1: ये अलावा भी कोई नवीन नवीन प्रयोग है तो करता रहे जो सेहत रे वास्ते फायदेमंद है और स्वास्थ्य वर्धक है एड़ा प्रयोग हमेशा सख्यो ना कहीं करता रहे और आप रे घर वाला ना परिवार वाला ना हमेशा दीर्घायु रखने का प्रयास करे
0: वाह शाबाश पण देखो के करे सब काम समय में थे
1: बिल्कुल
0: समय सु आगो पछो कोई काम करे तो अबड़ो लगे सबड़ो कोन लगे तो थोनो घड़ी कह रही हमें थे सबड़ा बन जाओ
1: समय रे साथ में आपो भी लेवो सखियों सु सीख और अगली बार नई चर्चा जानकारी रे साथ हाजिर हो सो घना घना
0: राम राम।

0: बहने अभी पनिहारी कार्यक्रम सुन रही थी। यह है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजे हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप समाचार सुनेंगे।
1: प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स मिलिट्री एक्शन इन ईरान, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पासेस रेजोल्यूशन। साउथ वेस्ट मॉनसून सेट्स इन ओवर केरला। And first World Yoga Sun Sports Championship to begin in Ahmedabad this evening. Prime Minister Narendra Modi held wide-ranging discussions today with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. In a social media post, the Ministry of External Affairs

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए, इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है।

0: खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। और मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी छुट्टी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
3: केरलम की 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
1: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम बिहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज मेहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमेर चैनल है। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 497.51 मीटर पर। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं मोहम्मद बुंदू खां।

ये है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया लाट साहब फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार

दुनिया बनाने गुरी पे हम चले। ओ मैं सूरज हूँ तू मेरी किरण।

0: दिल ने फिर याद किया फिल्म का। ये दो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर, जीएल रावल के बोल थे, सोनी कोमी का संगीत। रोशन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चलिए साथियों, अब सुना जाए रोशन के संगीत से सजा और साहिद लुधियानवी का लिखा गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। क्या कहता है ये गाना, दिल ही तो है।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम शबाब।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंद

0: आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका हुस्न कल भी तरोताजा था, खूबसूरत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर बढ़ा जाएं। शंकर जयकिशन की तर्ज पर शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर। क्या कहता है कन्हैया फिल्म का ये गाना, चलिए सुनते हैं साथ साथ।
1: नी बली है, रुत है बहार की, बली बली।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही हैं।
1: अब कहाँ नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है, कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ, तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी
0: और वो छू मंतर हो गया सा।
1: हाँ।
0: सारा दरियन, क्योंकि देखिए ना हर किसी के जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान होते हैं।
1: मतलब
0: ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में।
1: बिल्कुल,
0: तो हर किसी के साथ ऐसा होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
1: किसी ने कुछ कह दिया
0: किया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, तैयार भाई ये गत लगा लिया, तो खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जो उदास बैठा है उसके पास जाकर जादू की झप्पी दे दे और प्यार से उसके कंधे पर उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती हैं कि लोग अपनी जिंदगी से अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हो तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा होता है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखे, एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो जाता है।
0: और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद,
1: बिल्कुल
0: यानी बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना।
1: मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था पत्थर कंकड़ उससे फेंका और आम जो टूटता था और उस आम को लेने की पकड़ने की होड़ होती थी, कई लोग झुंड होता था बच्चों का तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे, और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं वो आनंद कहाँ है।
0: वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, भले उसमें पंछी ने भी अगर उसमें
1: खा लिया
0: तो भी हम उसे धोखे खा लेते
1: तो थे। कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो मीठा
0: और भी मीठा
1: होगा और वो देसी आम तरह तरह क्या। तो हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की,
0: आपके क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती हैं,
1: लिख भेजें।
0: हाँ, और साथ ही उपयोगी टिप्स, यानी आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा, तो वजन कैसे घटाएं इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स का शुरू भी कर दिया है, तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं इस बारे में हमें लिखकर
1: विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेह स्पर्श की, आज मोबाइल का जमाना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा हुआ कोई रो रहा है। लोग अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है, वाक्या है, तो आप जरूर साझा करें। और हम अब साझा करते हैं ये गीत।

0: तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे, और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गए तो
1: श्रोताओं के कमेंट्स कैसे
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती है कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है, और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
0: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खासतौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाले डिजाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, तो वो पहन ले, और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है, तो दुलारी देवी ने मधुबनी में रहते हुए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की जिंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनके परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गई इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी, और उनके पिता मछुआरे थे।
1: देखिए,
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी, कितनी अजीब बात है ना कि

0: छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियां उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहां पर सीखने का मौका भी मिला।
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए 5 रुपए, आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं, उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
1: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपनी सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी जिसे बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
0: क्या बात है।
1: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते। और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी गौरव की बात है।
0: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
1: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है।
0: और
1: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुन।
0: बिल्कुल, और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं।
2: रंग चुरा के

0: तो सोनाली जी, ये गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की, कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था वो एक वटवृक्ष की तरह था,
1: सचमुच।
0: कि जैसे हम तपती धूप से निकलकर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकाले, एक साथ परिवार के साथ बैठे, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें। और हम लोग है ना, हम लोग भारतीय, खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ते, चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसे झुक गए और जमीन में बस लिया, घुटने तक ही कर अब तो
1: दिया।
0: घुटने तक।
1: हाँ,
0: हाँ
1: बस
0: बिल्कुल,
1: इतना करते हैं। पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत

0: हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं और वो जो अंतिम मुलाकात होती है एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है। या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं, जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसकी पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे, तो ये बातें याद रह जाती है और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थके लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो जाती थी, लेकिन अब वो समय कहाँ है। और अब समय एक गाना सुनाने का,
1: सुनते हैं कि

0: यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे,
0: स्पर्श के माध्यम
1: हाँ
0: से?
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है ममता जी। एक हमारे
0: नीबर ने लिखा था ये
1: जी
0: गाना, और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माएं, तीनों देवरानी, जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दे। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं। वो हमारा प्यार, स्नेह, समय और स्पर्श ही चाहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहाँ आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: वैसे एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेहिल स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेम इन स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक श्रोता कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, हाँ मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक, लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीखते हैं क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपनी छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को

0: वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़ी बड़े होने के बाद याद रहती है, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं, या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है, जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रवाहित होती है, ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ आप कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहां पे टकराव ज्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़े और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाए, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
1: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
0: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
1: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेह स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेह स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरे धर्म पति इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
0: क्या बात है भाई,
1: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे
0: हैं। जी, तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता,
1: हाँ,
0: आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए, अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
1: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए, जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना उसकी मिठास ही कुछ और ही होती है और अपने अपने ही होते हैं, बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना।
0: बिल्कुल, और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखे। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं तो वहां पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है, इसका भी ध्यान रखिए आप।
1: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी कि कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: कहाँ हंसी ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहाँ हमें गले।
0: खासतौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उससे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना है, तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय आप गाना सुना दे,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई हूँ।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी,
0: आम बहुत खास है, कहने को
1: आम खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बाहर आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में। फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइप, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के कभी काट के। तो आप बताइए, आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
1: मतलब मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल
0: दी।
1: फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस 2-3 फाक खा लो
0: बस। हाँ, मतलब एक आम जैसे तैसे, हाँ, उससे ज्यादा नहीं खाना।
1: और फिर अगर तो ये आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम

0: कर दो कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान।
1: अच्छा, तो मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
0: खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं,
1: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इनके शौकीन होगी, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है अरे क्या बना है, आम का रस और पूरी तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
0: हाँ,
1: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूरी खा चुके हैं,
0: और लोग बुलाते भी हैं चलो हमारे घर आज आम रस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, बहुत बहुत आनंद आता है।
1: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोता परी एक ने लिखा है चौसा लंगड़ा ये आम हमने खाए हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा। इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में
0: जी
1: खासतौर से ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता
0: बहुत
1: है,
0: बहुत अच्छा लगता है वो आम,
1: तो उसमें जो
0: आम बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत
0: नहीं, जरूरत ही नहीं है उसमें, और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता
1: अभी
0: है।
1: लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में खासतौर से केसर आम,
0: हाँ
1: बहुत मीठा आ रहा
0: है, केसर आम है, फिर उसके बाद में जो बैगन फल्ली आम जो आता है वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं, मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया, पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है, सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन आम, आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्कशेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूँ।
1: बिल्कुल, और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं
0: जी,
1: और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं, भले खाए नहीं लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं
0: जी,
1: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए, वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए, और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
0: अपने आप
1: पनप जाते हैं, उग जाते हैं, जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम लगाए हैं और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा बस पूछिए मत, एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वेरायटी के आम की पूछो मत, जहां गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही, फिर दशहरी का क्या कहना, हापुस वाह ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है, मगर हापुस जी हाँ सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है, अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है, और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है। तो इनकी बात से मैं याद आ गया कि गाँव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था,
0: हाँ।
1: और लोग बाल्टी पूरी की पूरी बाल्टी आम खा लेते,
0: और वो छोटे छोटे चूसने वाले आम थे,
1: हाँ, जी हाँ। और आप तो कह रही कि एक आम दो फाक,
0: अब तो ओ ममता जी उस जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था, पर अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है,
1: और उसमें केमिकल नहीं होता,
0: हाँ,
1: था
0: कोई केमिकल नहीं,
1: कोई दवा मिला के नहीं, वो सीधे देसी आम।
0: खेलते कितने थे ममता जी हम उस वक्त, आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था, अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी की, गर्मियों की चिड़चिड़ाते धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं, पारी पारी जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हापुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं, और इसके व्यंजन भी जैसे आम रस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे।

0: तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रख कर खाते थे। तब और लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में पोड़ी पुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे
1: और आम का के यहाँ पे
0: और आम का पना भी बनता था। और साथ में गांव में तो आम के आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे। तो ये कितने तरह के आम के कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही नहीं निराली।
1: और आम की जो रोटी भी बनाते थे, आम का रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
0: आम पापड़
1: लगा के, आम पापड़ उसमें डाल के उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
0: अमावट भी कहा जाता है जिसे। तो और बोलिए,
1: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहां जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
1: आप एक गीत सुन ले।
0: सुनते हैं।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राही प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वार फली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है,
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं
0: जी
1: उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है। और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया था।
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना,
1: बिल्कुल मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दे, प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनवा।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं यूनुस खान बोल रहा हूँ। स्टूडियो नंबर एक वो स्टूडियो है जहाँ हम अपने फोन इन कार्यक्रमों के लिए आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288 यानी 2867 0288 और 0224002466 यानी 400-2462। सोमवार को दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होती है। देश भर के श्रोता फोन करते हैं और कई श्रोता इस बात से निराश होते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दरअसल फोन लाइंस की अपनी सीमाएं हैं ना। देश के कोने कोने से जब हजारों लाखों श्रोता एक साथ कॉल करते हैं तो कुछ खुशनसीब श्रोताओं का कॉल लग जाता है और उनकी हमसे बात हो जाती है। बस ये है कि आप कोशिश करते रहिए। और हाँ, जहाँ से फोन कर रहे हो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं। मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
0: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये।
1: हर मौसम का अपना मजा है सर जी। यदि अपन बारिश से फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा ना।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
1: नहीं सर जी।

0: ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सभी मौसम के आदी हैं और हमें हर मौसम में अपने उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं
0: आप? फिल्म का नाम है हम आपकी है कौन।
1: अच्छा,
0: उस फिल्म में लता मंगेशकर एसपी बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उसको प्ले कीजिएगा
1: जी।
0: गीत के बोल में थोड़ा गुनगुना के बता दो क्या सर जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है, ये वाला गीत सर जी।
1: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
0: नहीं, हम यहीं पर पैदा हुए हैं सर जी। जब एमपी था, मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया, तो हम लोग यहीं पे बस गए मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई एमपी में। बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और एमपी।
1: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
0: तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
1: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोलेंगे कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना। अरे बाप रे बाप। नहीं, इसको थोड़ा छोटा बोलिए। वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा, सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश,
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ, सासनी के चंडीगढ़ से।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल के। टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे यहाँ बेसर वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो व्यवहार के सुन रहे हैं।
0: अच्छा बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का ही गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आके टूट जाता।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, तू ही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी बोल नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच नहीं रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर
0: जी, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे
1: हैं? हम अपने एमपी सागर से विक्रम सिंह और पुचाली राजा।
0: विक्रम सिंह सागर में कौन से इलाके से बोल रहे हैं?
1: सागर इलाके में तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है कुआला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आया।
1: कुआला कुआला।
0: अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं आज?
1: अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है जी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है अभी, अब तो थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई 2 दिन तक में।
0: अच्छा कितनी बारिश हुई, बहुत सारी हुई है थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी हुई है सर, ज्यादा तो नहीं भाई है।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: अभी तो 9 तपा चल रहे, ये खत्म हो गए?
1: तीन दिन
0: तनक बाकी है, 3 दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए, फिर मौज हो जाए। काय
1: जी सर।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं ये बताओ?
1: हमको सुना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का। और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।
0: ए दद्दा रे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? कहा होगा हमें तो बताओ।
1: आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमें सो ही मजा आ गया।
1: बहुत आनंद आया सर,
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया। हमें जितने भी अपने श्रोता हरण है ना, सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है
1: जी। आपका बिल्कुल सर बुंदेलखंड जैसा बात का है, बिल्कुल आपका
0: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।

लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है, वो लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है, ये मक्कर बीन बजाते हैं, वो अपना राग सुनाती है, वो धुम्मक धुम्मक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं, एक तारा मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चर दी, तेरे बाप का वो क्या कर दी।

हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है, हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो रेल के डिब्बे हैं वो अपनी इंजन गाड़ी है, वो गुस्सा जब भी करती है तो बन जाती है, तो बन जाती है। अंगारा मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चर दी थी मेरे बाप का बुढ़ा कर दी थी, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।

0: प्रभु एक कटाती है, वो जान से बढ़कर प्यारी है, क्या बोलू एक कटाती है, कटदादी उसकी अखिया है, विश्वास अपनी यारी है, मैंने तो अपनी खल्लो का है नाम रखा, है नाम रखा
1: जहां नारा। मेरी भैंस को डंडा,
0: मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चर दी थी, मेरे बाप का बोझा कर दी थी, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चर दी थी, मेरे बाप का बोझा कर दी थी, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चर दी थी, मेरे बाप का बोझा कर दी थी,
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो,
2: हाँ जी कौन?
3: मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ।
2: ज्योति जी कहाँ से बोल रही हैं आप?

0: पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश।
1: अच्छा बताइए क्या हालचाल है पीतमपुर के?
0: जी बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है।
1: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं?
0: जी।
1: अब हमें ये बताइए, हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
0: गर्मी से बचने के लिए बाहर जाए तो टॉवल लेके जाए, छाता लेके जाए, पानी अपने साथ लेके जाए।
1: बहुत सही, बिल्कुल,
0: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले।
1: सही बात है। अच्छा बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
0: गाना फिल्म का नाम है सूरज, तुमसे इतना प्यार है।
1: क्या बात है, चलिए बातें करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: अच्छा बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अमीर नाई कोडोली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा बंद में सुनना चाहते हैं। पैसा
0: गाने की बोल बताइए। क्या बात है, साहिर लुधियानवी की बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या गर्व था।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: ये पूछे घर दिल कहीं के, ये पूछे ये नीलाम घर दिल कशी की।

सदा पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अधखिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुलगोविंद मित्र, उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने डेली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर।
0: जी,
1: बिजी बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा था।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए, क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
1: जी हालचाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये 3 दिन से थोड़ा सा मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी, बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी,
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश, और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर वो वाला, फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक जो शुरुआत किए है 1 बजे जो सुनता हूँ वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी दोस्ती फिल्म का राही मनवा, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे को, फिर दुख को अपना ही

यार ये सहारा क्या कम है, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक चांद ढलती आती है

लंबी अकेली राहों में हमराह तेरे कोई अपना तो है, हमराह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है।

0: जी मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे मैं नहीं, आप तो मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोला तो मजा आ गया, क्या बात है।
0: मजा आ गया क्या बात है, कौन बोल रही है आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, आपके बड़े सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका, जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे बड़ी जलन होती है।
0: अरे बाप रे,
1: मैं भी बात कर रही हूँ। ये
0: क्या बात है, देखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना।
1: पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में मैं सब है, आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से, यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात।
0: ओहो क्या बात है,
1: वो राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है, वैसे ही मैं आप भी मेरे जहन में हो
0: जी।
1: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत, सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ, लोग मेरे से तंग आ गए कितना बजाओगी करके।
0: अच्छा विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहा है आपके साथ, है ना?
1: मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूं, ये उनका यही लक्ष्य है बस।
0: क्या बात है जी, तो बताइए कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब रहे हैं?
1: सभी कार्यक्रम, ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
0: जी
1: वो बहुत अच्छे रहते हैं
0: जी,
1: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, और सब आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं।
0: हाँ, जी, जी, जी।
1: सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सभी जरूर सुनती हूँ
0: जी,
1: सुबह 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
1: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
0: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद है आपको?
1: अरे अरे मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले, पूरा गाना सुना सकती हूँ।
0: वाह वाह वाह, ये जानकर बहुत अच्छा लगा, मतलब वो जो आप कहती है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्या बात है
1: क्या बात है। थैंक यू
0: जी, शुक्रिया।
1: से आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, 57 नाउ, और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
0: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध भारती सुनते हुए,
1: सब सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बस।
0: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
1: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात। थैंक यू
0: शुक्रिया। हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यही करते हैं खत्म, और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।
2: सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, ये मेरे तट पर वो लोग आए, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए।

0: बंद खाके अपनी आत्मा गिरा के चले सर को उठा के
1: ये वचन भुला के उसकी बंद खाके।

0: तो ये पापी गंगा जल से विशुद्ध न होते।
1: राम तेरी गंगा मैली।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी बताइए।
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेतीबाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है, और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम।
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया, मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुत आयत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। और कई इसके कारण होंगे भैया, सबसे ज्यादा

0: यही अपन जो देखते हैं पर्यावरण में हस्तक्षेप करना है, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
1: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
0: फिल्म है राजा और रंग के, गीत के बोल है और फिर की वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
1: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा।

ना तर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से।

सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, बोलेगी तू ना बोली मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, डोलेगी तू ना डोली ओ सपनों में, सपनों में आने वाली रुक जा जाने।

फिर क्यों आने, तू कल फिर आना नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से कतरन न है तेरा बेईमान से कि तेरे न

दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662, अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का स्टडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम

0: को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा। पिटारा
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को युवा पुष्पेंद्र भौरा का युवा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ पर। दोस्तों, पेड़ लगाना पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, तापमान नियंत्रित रहता है, मिट्टी का कटाव रुकता है, हरियाली बढ़ाने में मौसम चक्र सही रहता है और जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है। आवश्यकता न होने पर नल बंद रखें, बारिश के पानी का संचयन करें, हार्वेस्टिंग करें और पानी को दूषित होने से बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के बजाय कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल करें। छोटी दूरी के लिए साइकिल का प्रयोग करें या पैदल चलें, जिससे ईंधन की बचत और प्रदूषण कम हो। दिन के समय प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें और कमरे से बाहर निकलते समय पंखे लाइट बंद कर दें। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह रखेंगे, उससे पहले ही सुनते हैं यह संदेश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गली गली।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गली गली

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, अभी हम सुन रहे फिल्म आरजू साहब तेरे दिल में, जिसे कुमार सानू ने गाया। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं पेड़ लगाओ और प्राण बचाओ पर। दोस्तों, पेड़ धरती पर सबसे पुराने जीव हैं। ये कभी भी ज़्यादा उम्र की वजह से नहीं मरते। हर वर्ष 5 अरब पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन हर वर्ष 10 अरब पेड़ काटे भी जा रहे हैं। एक पेड़ दिन में इतनी ऑक्सीजन देता है कि 4 आदमी जीवित रह सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक पेड़ रूस में है, उसके बाद कनाडा में, उसके बाद ब्राज़ील और फिर अमेरिका में, उसके बाद भारत में केवल 35 अरब पेड़ बचे हैं। एक इंसान के 422 पेड़ बचे हैं, लेकिन अगर भारत की बात करें तो हिंदुस्तान के लिए सिर्फ 128 पेड़ बचे हुए हैं। इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। साथियों, अपनी चर्चा को हम इसी तरह जारी रखेंगे, उससे पहले सुनते हैं।

साथियों, अभी हम चरित्र फिल्म बाजीगर से टाइटल रन जिसे कुमार सानू और कई ने संगीत दिया है अनु मलिक ने। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं स्वच्छ मन स्वच्छ तन पर। दोस्तों, साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, हमारे जीवन की प्राथमिकता है और स्वच्छता की साफ सफाई से हमारे जीवन को परेशानी से मुक्त पर रहती है। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। स्वच्छता से रहने से जहाँ शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं स्वस्थ तन और मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक है। स्वच्छता तभी हो लोगों की अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए आवश्यक रहती है। साथ ही अपनी चर्चा को इससे जोड़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं या गीत।

साथियों, अभी हम सुने थे दिल का क्या कसूर, दिल नजर जिगर, जिसे कुमार सानू ने सर ने। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं स्वच्छता पर। दोस्तों, जीवन में स्वच्छता से तात्पर्य स्वस्थ होने के साथ ही स्वच्छता की आदत के साथ है। हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे लिए शरीर को भी स्वच्छता बहुत जरूरी है, जैसे रोज नहाना, सफेद स्वच्छ कपड़े पहनना, दांतों की सफाई रखना, नाखून काटना आदि। इसके लिए हमें प्रतिदिन सुबह, जैसे कि सुकर उठते हैं, उनसे दांतों की सफाई करना, चेहरे हाथ पैर धोना, साथ ही स्नान आदि और दैनिक क्रियाओं को समय पर पूर्ण करना चाहिए। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह जारी रखेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं यह गीत।

इकरार कर इजहार कर इनकार कर, चाहे जो भी दे सजा।

लो जान से प्यारा, उसका नजर चुराना नहीं होता है गवारा।

साथी में अभी हम सुने थे अमराज से प्यार कर, जिसे आदित्य नारायण शान ने और कविता ने संगीत दिया है, शीर्षक में। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं जीवन में बचत के महत्व पर। दोस्तों जीवन एक अनमोल उपहार है, हमें ईश्वर से इस जीवन के लिए हमेशा मूल्यवान मानते हैं। लोग इसे पैसे और भौतिक सुविधाओं से व्यर्थ कर देते हैं। धन हमें सुविधाएं दे सकता है, लेकिन जीवन का हर क्षण वापस नहीं ला सकता। इस संबंध में हमें हमेशा जीवन के बचत में ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह रखेंगे, उससे पहले ही सुनते हैं ये गीत।

साथियों, अभी हम सुने थे फिल्म दिल से सतरंगी, जिसे गाया कुमार सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने। दोस्तों, अब समय हो चला है अपने युवा दोस्त पुष्पेंद्र भारा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे? उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:30 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और

0: समाचार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया। कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध करवाए गए विश्लेषण पर आधारित नहीं होगा। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों का ऐलान। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च की गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार हर घर और खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध कराए गए विश्लेषण और एल्गोरिथम निर्णय लेने पर आधारित नहीं हो सकता। मसौदे पर लोगों से इस महीने की 20 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं। इस ड्राफ्ट में एआई सहायता प्राप्त कार्यों, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, दस्तावेज सारांश, अनुवाद और प्रतिलेखन की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें सभी अदालती कामकाज को मानव नियंत्रण में रखना अनिवार्य किया गया है। प्रस्तावित मसौदा एआई को निर्णय देने, सजा तय करने, गवाहों की विश्वसनीयता का आकलन करने और कानूनी परिणामों का निर्धारण करने से रोकता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आज राजस्थान सहित 5 राज्यों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। राज्य में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेंद्र टंडन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बैठक में ऊर्जा क्षेत्र की साझेदारी करने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी का कल गुजरात और दमन दौरे का कार्यक्रम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आज आयोजित सुधार उत्सव में उन्होंने ये बात कही। श्री रिजिजू ने कहा कि तकनीक को अपनाने से मंत्रालयों को लाभार्थियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद मिली है।
2: भारत के कोने में बैठने वाला एक महिला भी हमारा स्कीम का लाभ उठा करके जिंदगी में, तो ये कितना कि हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम से लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। 2047 में हमको टारगेट सेट करना ही है, और जब हिंदुस्तान का आजादी का 100 साल पूरा होगा 2047 में, कोई गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान।
1: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली शुरू की है। आयोग ने इसका सफल उपयोग हाल ही में हुई सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षाओं में किया है। यूपीएससी अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने बताया कि इसके तहत आवेदन भरते समय उम्मीदवार की जो फोटो अपलोड की जाती है उसका मिलान कर देखा जाता है कि वही अभ्यर्थी परीक्षा देने आया है। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निलहानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 1982 में हथकड़ी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले श्री निलहानी ने आग ही आग, शोला और शबनम, आंखें, दिल तेरा दीवाना और तलाश सहित कई प्रसिद्ध फिल्में बनाई। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार आज लॉन्च की गई। फ्लेक्स फ्यूल ऐसे वाहन होते हैं जो पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये 20% से लेकर 100% एथेनॉल तक के ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग की। इस मौके पर श्री पुरी ने फ्लेक्स फ्यूल तकनीक को देश में ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि इसका बड़े पैमाने में इस्तेमाल होने से एथेनॉल आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। श्री गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहन प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात की निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के तहत बिजली उत्पादन निगमों की ओर से किए गए बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बिजली उत्पादन, आपूर्ति व्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। श्री नागर ने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के प्रयासों के बारे में भी बताया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर घर हर खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।
0: जयपुर में रूप टॉप कई जगह लग रहा है, लेकिन वो दिन के समय जो रूप टॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है। ऐसे कई हमने जीएसएस चिन्हित किए हैं जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन में वापस आता है, तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाए और उसको वही स्टोर करें, वही उसको उपयोग करें, ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक आवर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े और वो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही उसका उपयोग हो जाए, इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं।
1: देश में सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के निर्धारित लक्ष्य का 80% काम अब तक पूरा हो चुका है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि देश भर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर कुल 855 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में इस संबंध में बैठक ली। इस दौरान विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो, चार्जिंग स्टेशन बनाने और अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 1,150 बसें आवंटित की गई हैं। ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर और कोटा सहित 8 शहरों में चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल हो चुका है। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। विश्वास से विकास, सेवा से सुशासन नाम का ये जनसंपर्क अभियान 21 जून तक चलेगा। कार्यक्रम की सह संयोजक अपूर्वा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस दौरान विभिन्न गतिविधियां होंगी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें विभिन्न बूथों पर गांवों में ढाणियों में समस्त जन को जागरूक भी किया जाएगा पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण के आगे कैसे संरक्षित करना है इसका पाठ भी उनको पढ़ाया जाएगा। 5 जून के बाद में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के कैंप, वृक्षारोपण के कैंप और इन 12 वर्षों में जो प्रगति के पथ निर्मित हुए हैं वहां पे भ्रमण करने का, उन प्रगति के जो इमारतें हैं वहां पर जाकर विकास की सूचक से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया है। विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व राज्यपाल ने अपने संदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत छायादार पौधे लगाने और उनकी उचित देखभाल करने की अपील की है। वहीं पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और नागरिकों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कल से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में होने वाले इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोगों की भी सहभागिता रहेगी। प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। इस मौके पर पाली के जवाई क्षेत्र में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं ब्यावर के टूरिस्ट विलेज देवमाली गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का आज देश में आगमन हो गया है। केरलम से मानसून ने प्रवेश किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अगले 2-3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। इससे राजस्थान में भी आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। इस बीच राज्य में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे उदयपुर जिले में दोपहर बाद बरसात हुई। वहीं डूंगरपुर के सावला में ओले भी गिरे। चूरू जिले के बीनासर, सातड़ा और सहला सहित कई गांवों में तेज अंधड़ के बाद अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही को छोड़कर बाकी स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कुछ भागों में अगले 3 दिनों तक तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वहीं कुछ हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की आशंका है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के 7 प्रशिक्षु अधिकारियों को सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर जिलों में इन्हें पदस्थ किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया। कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध करवाए गए विश्लेषण पर आधारित नहीं होगा। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों का ऐलान। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च की गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार हर घर और खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आशीष मेहता ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां एक ओर पूरे महीने में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर बना रहा, वहीं महीने के आखिरी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों ने जिले वासियों को प्रभावित किया। इसी सिलसिले के साथ जून महीने की भी शुरुआत हुई। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन अभी भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित लोगों के उपचार के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बदलते मौसम के बीच जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और सूचीकरण का काम किया जा रहा है। प्रगणक घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इस दौरान वे लोगों से 33 सवालों के जवाब पूछकर सूचना एकत्रित कर रहे हैं। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक बीते दिनों कोटा आए और उन्होंने जनगणना कार्य की प्रगति के संबंध में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी जानकारियां वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही डेटा की गुणवत्ता, सत्यापन प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। जिले में इन दिनों भूजल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण को लेकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने चंबल रिवर फ्रंट से की। यह अभियान कल संपन्न होगा। 15 दिन के इस अभियान के दौरान जल संरक्षण और साफ सफाई से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इनमें कलश यात्रा, सरोवर और पीपल पूजन, ग्राम सभाओं का आयोजन, जल संरचनाओं की सफाई, प्रभात फेरियां, साइकिल रैली जैसी गतिविधियां शामिल हैं। 3 जून को ऊर्जा विभाग द्वारा जिले भर में ट्रांसफॉर्मर्स के आसपास साफ सफाई की गई। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने दिघोद के डूंगरजय स्थित कमल सरोवर में ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ श्रमदान कर

0: करते हुए घाटों की सफाई की। कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इसमें जिले में 100 से अधिक किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। जिले की महिला किसान वंदना गौड़ और किसान राहुल नागर को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार दिया गया। कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अगले वर्ष अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। दिसंबर से नियमित व्यावसायिक उड़ानें शुरू होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त तथा कोटा और बूंदी के जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की मानस गांव, रंगपुर, किशनपुरा, तकिया, ताथेड़, आरामपुरा, खेड़ारामपुर, भीमपुर, जाखोड़ा, अरंडखेड़ा, अरलिया, जागीर, गंदीफली और गोदलिया हीड़ी ग्राम पंचायतों में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन पर 18 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछले दिनों सांगोद स्थित अपने निजी आवास पर ERCP और बिजली विभाग से जुड़े उच्च अधिकारियों और अभियंताओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में परवन वृहद सिंचाई परियोजना की प्रगति, बिजली कनेक्शन और क्षेत्र की विभिन्न लिफ्ट परियोजनाओं पर चर्चा की गई। ऊर्जा मंत्री ने धुलेट टू लिफ्ट परियोजना से तत्काल कनेक्शन जारी करने को कहा ताकि कनवत क्षेत्र के 14 गांवों को जल्द से जल्द पानी मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने देवली लिफ्ट परियोजना से भी शीघ्र पानी देने के निर्देश दिए। श्री नागर ने मंडीता, कुंदनपुर, विनोद खुर्द और मंडाप गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बीते दिनों युवा आवास प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक की। युवा मामले और खेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार गठित की गई इस कमेटी के साथ कोटा में बन रहे यूथ हॉस्टल के प्रबंधन, रख रखाव सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश दिए। कोटा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश है, प्रादेशिक समाचार। पहली आज री खास खबरां। सर्वोच्च न्यायालय अदालता माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा उपयोग रो मसौदो जारी करियो। कोई भी न्यायिक फैसलो केवल AI री कानियों मुहैया कराया गया, विश्लेषण माथे आधारित नी वेला। राजस्थान सू राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव खातर भाजपा रा 2 प्रत्याशी ऐलान। सतीश पूनिया और अलका गुजर ने उम्मीदवार बनाए गयो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च करी गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कया राज्य सरकार हर घर और खेत में लगातार बिजली पुगाबा खातर कोशिश कर रही है। समाचार आरे सागे, मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ अदालत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम में लेवन रो मसौदो जारी करियो। इनमें साफ किनो है कि कोई भी न्यायिक फैसलो केवल AI री कानियों मुहैया कराया गया, विश्लेषण और एल्गोरिदम फैसला लेबा माथे आधारित नी सकेला। मसौदा माथे लोगानु इन मीनारी 20 तारीख तय सुझाव मांगा गया है। इन ड्राफ्ट में AI सहायता प्राप्त काम, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, दस्तावेज सारांश, अनुवाद और प्रतिलेखन री मंजूरी दी गई है। हालांकि इनमें सगड़ा अदालती कामकाज ने मानव नियंत्रण में राखनो जरूरी करियो गयो है। प्रस्तावित मसौदो AI ने फैसला लेबा, सजा तय करबा, गवाहारी विश्वसनीयता को आकलन करबा और कानूनी नतीजा तय करबा सो रोके है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 3 सीटा माथे होबा वाला राज्यसभा चुनाव खातर आपरा 2 प्रत्याशियों रो ऐलान करियो है। पार्टी सतीश पूनिया और अलका गुजर ने आपरो उम्मीदवार बनायो है। भाजपा

0: बसपारा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आज राजस्थान समेत 5 राज्यां खातर आपरा प्रत्याशारो नाम ऐलान करियो है। राज्य माए 3 सीटा माथे राज्यसभा चुनाव वेला इन खातर 8 जून तई नामांकन दाखिल करिया जा सके है। 18 जून ने वोट पड़ेला और 19 दिन नतीजा ऐलान करिया जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला री कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज री आज नई दिल्ली माए मुलाकात हुई। इन दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल समेत दूजा हलका माए इमदाद बढ़ावारी संभावना माते विचार करियो गयो। पूर्वी हलकारा सचिव रुद्रेंद्र टंडन मीडिया से बातचीत माए बताया कि इन बैठक माए ऊर्जा हलकारी साझेदारी करबा माते खास रूप चर्चा करी गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी रो काल गुजरात और दमन दौरा रो कार्यक्रम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू कया के शासन व्यवस्था ने चोखो बनावा और जनहित योजनावा ने चलावा माए प्रौद्योगिकी महती भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार रा 12 बरस पूरा हो बारे मौके नई दिल्ली माए आज राख्या सुधार उत्सव माए यह बात की गई। श्री रिजिजू कया के तकनीक ने काम में लेबा सु मंत्रालय रा लाभार्थियों रा जीवन माए बड़ो बदलाव लियाबा माए इमदाद मिली है।
1: भारत के कोने में बैठने वाला एक महिला भी हमारा स्कीम का लाभ उठा करके जिंदगी में, तो ये कितना कि हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम से लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। 2047 में हमको टारगेट सेट करना ही है और जब हिंदुस्तान का आजादी का 100 साल पूरा होगा 2047 में कोई गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान।
0: संघ लोक सेवा आयोग UPSC परीक्षा प्रक्रिया ने और सुरक्षित और साफ गोई बढ़ावा खातर फेंस ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली शुरू करी गई है। आयोग इंडो सफल इस्तेमाल हाल ही में भी सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा की शुरुआती परीक्षा माय करियो। UPSC अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार बताया रे इंडरे तहत आवेदक भर्ती टेम उम्मीदवारी जो फोटो अपलोड करी जावे है उनरो मिलान कर देखो जावे है के उन्हीं अभ्यर्थी परीक्षा देबा आयो है। जानिया मानिया फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी आज मुंबई माए देवलोक रह गया। वह 76 बरस रहा। बरस 1982 माए हथकड़ी फिल्मों आपरा कामरी शुरुआत करबा वाला श्री निहलानी आगिया, शोला और शबनम, आंखें, दिल तेरा दीवाना और तलाश समेत कई नामजोग फिल्मा बनाई। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड रा अध्यक्ष भी रहा। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार आज लॉन्च करी गई। फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल रा मेल सु चाल सके है। ये 20% 100% एथेनॉल ने ईंधन रा रूप माए काम माए ले सके है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली माए इनरी लॉन्चिंग करी। राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र माए आत्मनिर्भर बनावारा लगस रहते बिजली उत्पादन निगम रिकानियों करिया गया चोखा प्रदर्शन ने लेर ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर आज जयपुर माए प्रेस वार्ता करी। इन दौरान वना प्रदेश माए बिजली उत्पादन आपूर्ति व्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनावा माते विस्तार चर्चा करी। श्री नागर किसाना ने दिन माए बिजली मुहैया कराबा खातर आबाद की। ऊर्जा मंत्री कहा के राज्य सरकार हर घर हर खेत तय लगातार बिजली पुगावा खातर कोशिश कर रही है।
2: जयपुर में रूफ टॉप कई जगह लग रहा है लेकिन वो दिन के समय जो रूफ टॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है। ऐसे कई हमने जीएसएस चिन्हित किए हैं जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन वापस आता है तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाए और उसको वही स्टोर करें, वही उसको उपयोग करें ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक आवर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े और वो वही डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही का उपयोग हो जाए, इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं।
0: देश माए सरकारी भवना माथे सौर ऊर्जा संयंत्र लगा बारा तय लगसरो 80% काम हाल तय पूरो बैगियो है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जो

0: जोशी आज न्यारा न्यारा मंत्रालय और संस्थानारा एहलकाना सागे बैठक करी। श्री जोशी सोशल मीडिया माते बताया कि देश भर में 53,072 सरकारी भवना माते कुल 855 मेगावाट बूतारी सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई जा चुकी है। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसा चलाबा खातर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और जरूरी व्यवस्था पक्की कर बारो काम चल रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में इन बाबत बैठक ली। इन दौरान न्यारा न्यारा शहरा में इलेक्ट्रिक बसा खातर डिपो चार्जिंग स्टेशन बनावा और दूजा कामारी समीक्षा करी गई। बताई जावे है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान ने 1150 बसा आवंटित करी गई है। ये जयपुर जोधपुर बीकानेर अजमेर अलवर और कोटा समेत 8 शहरा माए चलाई जावेला। इन बसारो ट्रायल दे चुकियो है। इन खातर जरूरी सुविधा बात है तेजियों विकास काम करियो जारियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार 12 बरस की उपलब्धियां ने जन जन ताई पुगाबा खातर प्रदेश भाजपा री कानियो राज्य व्यापी अभियान चलायो जावेला। विश्वास सु विकास, सेवा सु सुशासन, नाम रोयो जनसंपर्क अभियान 21 जून तई चालेला। कार्यक्रम री सह संयोजक अपूर्वा सिंह आकाशवाणी ने बतायो के इन दौरान न्यारी न्यारी गतिविधियां वेला।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें विभिन्न बूथों पर गांवों में ढाणियों में समस्त जन को जागरूक भी किया जाएगा पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण के आगे कैसे संरक्षित करना है इसका पाठ भी उनको पढ़ाया जाएगा। 5 जून के बाद में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के कैंप, वृक्षारोपण के कैंप और इन 12 वर्षों में जो प्रगति के पथ निर्मित हुए हैं वहां पे भ्रमण करने का, उन प्रगति के जो इमारतें हैं वहां पर जाकर विकास की सूचक से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े लोगों पर्यावरण मुजब जीवन शैली बना बारी अरज करी। विश्व पर्यावरण दिवसों पहली राज्यपाल आपरा संदेश माए एक पेड़ माँ के नाम अभियान रे तहत छायादार पौधा लगाबा और वारी चोखी देखभाल कर बारी अरज करी। अठीने पर्यावरण संरक्षण ने जन आंदोलन बनाबा और नागरिका ने पौधा लगाबा खातर जाग जगा बारा लगसू कालू हरियालू राजस्थान 2026 अभियान री शुरुआत पहली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर इनकी शुरुआत करेला। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान माए होबा वाला इन कार्यक्रम माए जन प्रतिनिधि पढ़निया स्वयं सेवी संस्थावा और आम लोग मौजूद रह वेला। प्रदेश भर माए विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके कई कार्यक्रम रखा गया। इन मौके पालीरा जवाई हल्का माए खास स्वच्छता कार्यक्रम चलायो जावेला। इन मौके ब्यावरा टूरिस्ट विलेज देवमाली माए सिंगल यूज प्लास्टिक रे खिलाफ जागरूकता अभियान चलायो जावेला। दक्षिण पश्चिमी मानसून आज केरलम सो देश में आ गयो है। भारत रा मौसम विज्ञान महकमा ने पुष्टि करी है कि आवता 2-3 दिन में मानसून आगे बढ़ सके है। इनसो राजस्थान में भी आंधी बारिश हो बारो अंदाजो है। इन बीच राज्य में आज तो नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय भी है। इनसो उदयपुर जिला में दोपहर पाछे मेह बरसो, पठी ने डूंगरपुर रा सांबला में ओला पड़िया। चूरू जिला रा बिनासर सातड़ा और सहला समेत कई गांव में तेज अंधड़ रे पाछे चोखो में बरसो। मौसम महकमो आज 9 जिला में आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट बतायो। पटी ने जैसलमेर बाड़मेर जालोर और सिरोही ने छोड़कर बाकी थोड़ा माथे येलो अलर्ट जारी करियो गयो है। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप रा पहला संस्करण शुरुआत आज अहमदाबाद में भी। 5 दिन रा इन आयोजन में देश दुनिया रा करीब 500 एथलीट भाग ले लिया है। बाड़मेर में आज उत्तर पश्चिमी रेलवे रा पहला वाटर रिसाइकलिंग संयंत्र रो उद्घाटन करियो गयो। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा महाप्रबंधक अमिताभ रेलवे स्टेशन माथे इनरी शुरुआत करी। करीब 2.5 करोड़ रुपया री लागत बढ़िया इन कारखाना रेलवे लीनन री धुलाई माए काम माए लियो गयो पानी दोबारा काम माए लियो जा सकेला। और अब आखिर माए खास खबर एक फेरू। सर्वोच्च न्यायालय अदालत माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा उपयोग रो मसौदो जारी करियो। कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानियो मुहैया कराया गया विश्लेषण माथे आधारित नहीं वेला। राजस्थान राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव खातर भाजपा रा 2 प्रत्याशी ऐलान सतीश पुनिया और अलका गुर्जर ने उम्मीदवार बनायो गयो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नवी दिल्ली माए लॉन्च करी गई और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर कया राज्य सरकार हर घर और खेत ताई लगातार बिजली पुगा

0: हवा खाकर कोशिश करी है। इंद्र सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो मां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजिया हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी सुनने वाले सकले किसान भाई और पूजा बहन और
6: लालजी भाई रा घना घना राम राम
5: राम राम। लालजी भाई, लालजी भाई देख रहे हो गर्मी रो प्रकोप तो बढ़ी रहे है, हालांकि नव तपा तो खत्म हो चुकिया है लेकिन गर्मी तो आपरे स्तर मत है ओड़ी है। खैर अलर्ट भी होड़ो है कि बरसात रो संभावना है, तो आप और किसान भाइयों ने मौसम के अनुसार आप रो चाप तो देखना चाहिए, आप को यंत्र भी जाए वो भी देखभाल करे, खेतों देखभाल करता रहे और पशु दंडो भी ध्यान रखे, क्योंकि सारे काम करना और फर्ज है। सबसे बड़ी बात आपको कर जाए कि आप जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है आप किसान भाइयों की उत्तरोत्तर उन्नति रह वास्ते हमेशा लग प्रयास करता रहे, और हाँ भी ये महीने में यानी कि 1 जून से लेकर के 30 जून तक माननीय प्रधानमंत्री जी जिस आह्वान मत है अपर देश रे मोए खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि हणो अभियान चल रहा है, और ये अभियान रे मोए कृषि वैज्ञानिक है, केंद्र और राज्य सरकार और राज्य को अधिकारी है, इसके अलावा जो जन प्रतिनिधि है और जो को प्रगतिशील किसान है वो गांव गांव में जावे और किसानों ने संतुलित खाद रो उपयोग करना, नकली पेस्टिसाइड की पहचान करनी और दूसरों वैज्ञानिक खेती कौकर हो भी उरा की फायदा है किसान भाई कौकर करे ये बारे में पूरी अच्छी तरीके से विस्तृत जानकारी देवी। तो आप और तो किसान भाई से आग्रह है कि ये अभियान से ज्यादा जुड़े, वैज्ञानिक सलाह अनुसार खाद रो उपयोग भी करे और प्राकृतिक खेती भी और बढ़े, ताकि आप और जो उमर प्रधानमंत्री जो सपनों है कि आप और किसान भाई है जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जावे उमर सपनों पूरे हो सके।
6: बिल्कुल सही बात है, खेत बचाओ अभियान देखो खेत बचाओ अभियान में ये है कि किसान भाई है जिके शू किसान भाई आप खेत में कौकर उन्नति कर सके, कौकर आप पैदावार बढ़ा सके, कौकर आप बीज खरीदना है या कौकर आप कृषि यंत्र खरीदना है, कौकर बोरी सरकार मतलब हर पग पग मेरी सहायता करे, तो खेत संबंधित किसानों से संबंधित कुछ भी अड़ी चीज़ें हैं जो को सरकार द्वारा उन्हें बताई जावे, और किसान भाई है वो मैं समझदार भी है और प्रधानमंत्री जी भी ये सपन हुए कि भाई जो किसान है वो हमारी आय दुगनी तिगनी हुए, तो मतलब यही है कि भाई उम्री आय वो खेत से ही जो डबल हुए
5: जी,
6: तो वास्ते किसान भाई भी मेहनत करता रहे और वास्ते भी देख रहे हो कि भाई आप थोड़ा सीख ला रहे जाऊँ

0: तो आप वो समझे कहते थे यहाँ पर बरसात अभी कौन होती थी, और बरसात होती थी तो बस किसान भाई यहाँ पर बरसात का खेत होता है निर्भर होता
1: जी बिल्कुल।
0: देखो हमें स्थितियाँ बदल गए हैं, हमें यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर भी आ गई है
1: जी बिल्कुल,
0: और साथ साथ यहाँ पर ट्यूबवेल भी है बहुत आज हो गया है
1: जी जी।
0: तो हमें यहाँ पर जो एक जो कृषि रो ढांचो है वो बिल्कुल बदल गए हैं
1: जी जी।
0: ये थे पौधे का पानी कौन होते, लेकिन आज अपन छऊ और अपन पानी मिले और किसान भाई ये पानी हुए जमीन बढ़िया हुए तो किसान भाई वो कीन की अपना नवाचार भी कर सके
1: जी बिल्कुल।
0: और वो बताए अगर सरकार वो मदद करे जी हमें बता भी खेत बचाओ अभियान
1: जी,
0: खेत बचाओ अभियान में सरकार है जो किसानों ने हर प्रकार की मदद है या
1: जानकारी
0: दे रहा है
1: जी बिल्कुल।
0: निश्चित रूप से ये अभियान से जो किसान भाई है उन्हें फायदे भी मिले, फायदे के साथ साथ वो आपकी जो को आय है उन्हें भी बढ़ा सके। उस साथ आप ये भी देखो भी किसान भाई आपकी आय बढ़ाने वास्ते हमेशा प्रयासरत रहे तो वो वास्ते किसान भाई देखो कि भी आपने खेतों में फलदार पौधा लगाना चालू कर दिया है
1: जी।
0: तो उन्हें खेती के साथ साथ वो स्थान मतलब उन्हें फलदार पौधों से उन्हें भी इनकम मिल रही है
1: जी।
0: और आप देखो कि बागवानी भी लगा रहे हैं तो बागवानों से भी उन्हें फायदा मिल रहा है और जिसके किसान भाइयों को ज्यादा पानी है तो वो जगह वो मछली उत्पादन भी कर रहा है
1: जी
0: तो
1: जी
0: मछली से भी उन्हें फायदा मिल रहा है
1: जी।
0: तो कहने मतलब यही है कि भाई किसान भाई है जो को सरकारी प्रयास रहता है और उस साथ साथ जो को भी कृषि कार्य क्षेत्र जितना भी है जितना भी कृषि अधिकारी है वो भी किसानों की पूरी पूरी मदद
1: कर रहे
0: कि भाई कई समय रमो है थोड़ा की भावना है
1: जी,
0: जमीन जांच कोकर करानी है मिट्टी पानी जांच कोकर करानी है
1: जी बिल्कुल।
0: उस साथ थोड़े मिट्टी में अगर कोई कमी है तो थोड़ा कोकर पूर्ति करनी है
1: जी जी
0: तो ये भी अपन बरोबर बता रहे हैं और दूसरों कृषि वैज्ञानिक है वो नई नई पौधों की खोज भी कर रहा है
1: जी जी
0: कि कम पानी में ज्यादा गर्मी में अपन कोकर ज्यादा फसल
1: उत्पादन
0: हुए तो उमरा प्रयास और किसान भाइयों की मेहनत ये भी अगर मिल जावे नहीं तो की हुई कि किसान भाइयों लाभांश उमरों बढ़ जावे और किसान भाई दूसरों ये भी है कि आप भी देख रहे हो कि किसान भाई ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरक कर रहा है तो आप जो को कृषि अधिकारी है या कृषि कार्यालय है वो भी वो नहीं सचेत कर रहा है कि बीज तो हो सके थे रासायनिक उपयोग मत करो और जैविक क्रिया और जाओ जैविक क्रिया और जाओ उनसे वो ना फायदा भी है अगर आप रासायनिक और जैविक प्रकार की खेती करो तो आप अगर बाजार में फसल बेचो ये जगह आप रासायनिक रखो ये जगह आप जैविक रखो तो निश्चित रूप से अपन जैविक का दाम अधिक मिले और उन लागत भी कम आवे तो देखो किसान भाइयों ने उनमें भी फायदा हुआ है
1: जी।
0: तो किसान भाई अगर छोटा मोटा प्रयास करता रहे नी तो वो किसान भाई आय है उमारी बढ़ती रहे और उमारी जो को खेती बाड़ी है वो भी उमारी अच्छी होती रहे
1: जी बिल्कुल सही बात है।
0: आगे भी बात जारी रखो और हमें आप सुन सो एक राजस्थानी
1: लोकगीत।

तो लाल जी भाई हाँ सुनी आप है, बहुत ही बढ़िया राजस्थानी लोकगीत तो पणिहारी, और पणिहारी यानी कि बरसात रे तो सबनों आवश्यकता है जी, और आप और वास्ते अरदास भी कर दियो। बात कर जावर किसान भाई सो, तो आप बात कर रहा था कि जब गर्मी का दिन है तो किसान भाई वास्ते हाँ खेतों में विशेष रूप से तो घणो काम को नहीं है नहीं, क्योंकि निरंतर समय है, लगभग अप्रैल मई जून राज्य को महीना है ये टाइम पर किसान भाई रास्ते खेतर में विशेष काम कौन होया करे, लेकिन फिर भी खेतरा काम बीजा भी घना ही है जो देखभाल करनी है, मिट्टी पौने की जांच करानी है या अपने यंत्रों की देखभाल करनी है, खेत की मरम्मत करानी है, और ये साथ में जुताई का काम भी आप किसान भाई करिया करे। जुताई का काम

केवड़ में तो यूँ है कि बहुत ही आसान कौम है, लेकिन जुताई करने के किसान वगैरह वास्ते बहुत एक कौम है, बड़ो जवाबदारी रो कौम है। और आप तो ऐसे कहना है कि वो जितनी भी जुताई करे तो वह सो भी थोड़ी ज्यादा और गहरी जुताई करे, क्योंकि गहरी जुताई करने सो आप और किसान वायर वास्ते एक तो है बहुत प्रभावशाली है, और दूसरों एक कम लागत वाली खेती दी एक क्रिया है। क्योंकि ये मैं क्यों होया करे कि जिसको जुताई करण सो मिट्टी की निचली सतह में जिसको हानिकारक कीट है जिसको आप फसलों ने नुकसान पहुंचाया करे, या दीमक है, उरा प्यूपा है, अंडा है, या फफूंदी है, ये प्रकार से जिसको भी हानिकारक अंश है वो सारे ऊंचे आ जावे और तेज धूप रे मोए, क्योंकि धूप इतनी है कि मिनक बढ़ रही है तो बचा कीट कीट और तो की बिसात है तो एक जो कीट हो वो सारे जुलस करके नष्ट हो जावे। दूसरो जब जुताई रो जो करी जाए तो जिको कीट बाहर आवे तो कुछ पक्षी भी है वो कीट ना खा लिया करे, ईसो भी सफाई हो जावे, और ऐसा सफाई होने से अपरो खेत आगामी फसल रे वास्ते पूर्ण रूप से तैयार रहे ताकि कीटों की संभावना कम हो जावे। दूसरो गहरी जुताई करण से खरपतवार बीज जिके ज्यादातर जो मोथा घास है जो को आप खेतों में ज्यादातर आप नुकसान पहुंचाया करे तो ईरा बीज भी ऊपर आ जावे और वो भी समाप्त हो जावे, पछे वो भी पोंगरण वास्ते फिरण वास्ते समय और सुविधा कोनी मिले नहीं। इस प्रकार से आप खेतों की पूर्ण रूप से सफाई हो जावे। दूसरो मिट्टी की जो निचली सतह है वो जो खेती करने से कठोर हो जाया करे, तो कठोरपन जो को भी वो जुते करने से वो जमीन है वो पोली हो जावे, जमीन है यहाँ पर भुरभुरी हो जावे। वो पोली होने से की है एक तो में बरसात से जो पानी है वो ना ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जावे, वो पानी ने सोखन रही एक लंबे समय तक पानी ने बनाए रखन रही, और दूसरो ये रमो है मिट्टी के भुरभुरी होने से उसमें छेद बन जाए ना कि पोली हो जावे में जगह हो जावे तो उसमें हवा रो आवागमन है सूरज की रोशनी है वो भी आसानी से प्रवेश कर सके। और ये सबसे की है कि आप और खेत की जो मिट्टी है वो उसमें उपजाऊ तत्व बनपना शुरू हो जावे। तो ये प्रकार से गहरी जुताई करना आप और किसान वगैरह वास्ते लाभदायक है, क्योंकि एक तो कीटाणु नष्ट हो जावे जिसको भी हानिकारक कीटाणु है खरपतवार नष्ट हो जावे, दूसरो भूमि रे जल ग्रहण करने की क्षमता यानी कि आप जिकन का भूमिगत जल रो जो स्तर है वो भी बढ़े, इस साथ में जो आप पेड़ पौधा लगा जाए तो उमरी जड़ों ने पोंगरण वास्ते भी जगह मिल जावे, क्योंकि भूमि अगर पोली हो से तो आसानी से बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से सब फायदा ही फायदा है। तो आप किसान भाई जब ऐड़ो काम करे जुताई रो तो आप पूरा कह रहे हैं कि थोड़ी गहरी जुताई करे, बात तो आप आगे भी जारी रख सो पहले समझे राजस्थानी लोग की।

0: तो लालजी भाई हाँ सुनियो आप राजस्थानी लोकगीत और ये गीत के समापन के साथ ही आप कार्यक्रम रो बखत भी होगी पूरा तो आप ले जाना सीख कर जाए राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7:30 होने को हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी एट द रेट 90 90।

0: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है और इस अवसर पर हम बहुत सारे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य किए हैं और आज भी वो कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं जैसलमेर के पूर्व प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नागौरी जी, और इन्होंने हमारे जैसलमेर की समाज की बहुत सेवा की है और आज भी लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। सर, हम आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं।
1: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: सर, हम शुरुआत करें अगर आकाशवाणी की, तो 1936 का वो दौर जब आकाशवाणी भारत में शुरू होता है। आकाशवाणी की शुरुआत जिस तरह से हुई थी, वो दौर ऐसा था कि जो हम कहें संसाधन भारत के पास नहीं थे, यानी सूचना के लिए उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि त्वरित पहुंच सके, सबके साथ कुछ बातें शेयर की जा सकें। आज का समय तो बहुत अलग है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे संसाधन हैं कि एक सेकंड के अंदर पूरे विश्व में अपनी बात को फैला सकते हैं, लेकिन वो दौर अलग था। और वो दौर ऐसा था कि भारत इतनी विविधताओं के होने के बावजूद कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक ऐसी समानता थी जो कि हम यूँ कहें कि भारत की आज़ादी के लिए एकजुट होकर लड़े, भारत की गरीबी को दूर करने के लिए एकजुट होकर लड़े। अब आकाशवाणी जब शुरुआत हुई तो उद्देश्य यही था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सबका यूँ कहें कि सुख और सबको आकाशवाणी संपन्न बना सके, ये उद्देश्य था। तो आकाशवाणी ने जो विभिन्न समाज हैं हमारे देश के अंदर, उनकी सामाजिक समरसता को सुरक्षित रखते हुए एक सूत्र में किस प्रकार बांधने का कार्य किया?
1: श्याम जी, 1936 में जिस समय आकाशवाणी की औपचारिक शुरुआत हुई, उस समय भारत में परतंत्रता का दौर था। राजनीतिक दृष्टि से हम परतंत्र थे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से कुछ भिन्नताएं देखते हुए भी उस समय भी आज भी भारत मूल रूप से एक समाज रहा है, और विविधताएं होना स्वाभाविक है। सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जाति

0: कदरी के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत प्रकार के रीति रिवाज परंपराएं हैं। अब उस परिस्थितियों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, भारत राजनीतिक दृष्टि से मुक्त हुआ, स्वतंत्र भारत का निर्माण होता है। उस समय संचार के माध्यम इतने विकसित नहीं थे, आज से तुलना करें तो उस समय आज की तुलना में तो एडवांस टेक्नोलॉजी, दुनिया भर के संसाधन विकसित हो गए, वैज्ञानिक प्रगति दुनिया ने की, उसके साथ भारत ने भी लगभग बराबर बराबर की स्थिति बना दी है वैज्ञानिक प्रगति में। लेकिन वो दौर ऐसा था जिस समय केवल मात्र समाचार पत्र, वो भी गिने चुने पढ़े लोग लिखे लोग पढ़ सकते थे, अनपढ़ लोग निरक्षर लोगों तक वो अक्सर भी नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि उनके लिए उसका कोई उपयोग नहीं था, देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते। तो सामान्य व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, उस व्यक्ति में भी जागरूकता और समाज निर्माण की भावना, उसकी क्षमताओं का उपयोग करना, उसको समाज के हित में, देश के हित में कैसे उसका उपयोग लाया जा सकता है, तो उसमें समाजीकरण में और लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित एक अच्छा जिम्मेवार नागरिक बनाने में आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है आकाशवाणी, अपन कहें कि केवल समाचार ही आकाशवाणी के माध्यम से मिलते थे या इसमें गीत संगीत के ही प्रोग्राम होते हैं, ऐसा नहीं है। आकाशवाणी का किसी जमाने में बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है, गांव गांव ढाणी ढाणी दूर सुदूर क्षेत्रों में बैठे हुए हमारे सैनिक बंधु, उनकी माताएं, उनका परिवार सब प्रकार के समाचारों में से अवगत होते रहते थे कि भाई किस प्रकार की देश समाज में दुनिया में क्या परिस्थितियां बन रही है। उस समय ना मोबाइल थे, ना टीवी था, ना किसी प्रकार के संचार के माध्यम थे। कुछ चीजें काल बाह्य हो गई, आउटडेटेड हो गई, जैसे टेलीग्राम का पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया, वो डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट को, क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, उसका उपयोग नहीं, उससे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और आ गई, उसको रिप्लेस कर लिया। लेकिन आकाशवाणी शतायु के नजदीक पहुंच रहा है, उसके बाद भी अपना अस्तित्व बनाए हुई है, तो यह अपने आप में किसी हिमालयन टास्क से कम नहीं है, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है कि उस प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भी अपने आप को अक्षुण बनाए रखना। आज भी जैसा कहते हैं कि आकाशवाणी का प्रभाव कम हो गया है, इस बात से अपन इनकार नहीं कर सकते, रेडियो का आकाशवाणी का प्रभाव कम हो गया, लेकिन इसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है, ये आज भी दुनिया में बहुत प्रासंगिक है। जब सारे संचार माध्यम फेल हो जाते हैं, उस समय ये रेडियो सबसे बड़ा विश्वसनीय सूत्र रहता है सूचनाओं का और जानकारियों का, और केवल आकाशवाणी में ये सूत्र समाचार ही नहीं मिलते, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, विद्यार्थियों के लिए भी कार्यक्रम होते हैं, वैज्ञानिकों के लिए भी वार्ताएं आती है, किसान भाइयों के लिए भी होता है, युवाणी जैसे कार्यक्रम चलते हैं, युवाओं को भी प्रेरक कार्यक्रम मिलते हैं, मनपसंद गीत सुनने का भी इसमें अवसर दिया जाता है कि आप अपनी इच्छा से कौन सा गीत संगीत सुनना चाहते हो। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल, जिसको हम कह सकते हैं बहुआयामी प्रकल्प है, जो राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभा रहा है, ऐसा मेरा मानना है।
1: शुरुआत जो हम अपने समाज की करें कि रेडियो से पहले जो व्यक्ति थे, हमारे जो बच्चे थे छोटे होते थे, तो अपने माँ बाप से, अपने नानी नाना से, या थोड़े बड़े हो जाते तो घर के बाहर आमतौर पर शाम को बड़े बुजुर्ग बैठ जाते थे और बड़े कहानी किस्से, प्रेरक किस्से सुनाया करते थे, जहाँ बच्चों को ऐसी कहानी सुनाई जाती थी परियों की, या यूँ कहें कि चंदा मामा जैसी, तो बच्चे उनसे प्रेरणा लेते थे, कल्पना करते थे, कल्पना की उड़ान भरते थे। लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते थे तो जो समाज के बड़े बुजुर्ग थे उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था और वो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते थे, जैसे कि हमारे जो शास्त्रों के अंदर ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, चाहे रामचरितमानस का हो, महाभारत का हो, कृष्ण के प्रसंग हो, तो उनके माध्यम से उनका चरित्र, यूँ कहें कि चरित्रवान व्यक्ति हमारे समाज में उभर कर आते थे। जो आज समस्याएं दिख रही हैं वो समस्याएं उस समय नहीं थी, लेकिन रेडियो ने लगातार ऐसी, यूँ कहें कि वार्ता हैं, ऐसे नाटक और ऐसी प्रेरणादायक बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्ग महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। क्या आप मानते हैं उन कार्यक्रमों का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा और समाज एक, यूँ कहें कि अच्छे संस्कार लेकर के पूरे देश में रेडियो ने फैलाए?
0: उस पीढ़ी के लोगों ने जिन्होंने रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से उसके साथ साथ अपना जीवन व्यतीत किया है, उन लोगों के स्मृति में आज भी इसकी अमिट यादें हैं, आज भी उनको वो कार्यक्रम बराबर याद आते रहते हैं, समय समय पर सुनने का प्रयत्न भी करते हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि रेडियो के माध्यम से यह एक संचार का बहुत बड़ा माध्यम था और इसमें बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण ज्ञान का प्रचार प्रसार होता था और उससे प्रेरणा लेकर लोग आगे बढ़ते थे और बहुत सारे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और बिल्कुल व्यवस्थित रूप से वही चीज प्रस्तुत की जाए जनता के सामने, नागरिकों के सामने, जो समाज उपयोगी हो, जो राष्ट्र उपयोगी हो। अन्यथा तो हर समस्या के, हर बात के पहलू नकारात्मक सकारात्मक होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल मोटिवेशनल प्रेरक बातें ही बताई जाती ताकि हमेशा आदमी के मन में, महिलाओं के मन में उत्साह का संचार रहे और वो जीवन में जो कोई भी कठिनाई आती है तो उसका हंसकर सामना कर सके, उसका मुकाबला कर सके, उनका मनोबल बना रहे। इस नाते आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका है, रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हर चीज़ जो नई आती है उसके दुष्प्रभाव जरूर होते हैं, लेकिन आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम रहा जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। जो कुछ दिया आकाशवाणी ने, अच्छी बातें बताई, अच्छे समाज का निर्माण किया। हम अपने समाज की रचना को देखते हैं तो भारत में इतनी विविधताएं होते हुए भी जो भारत एकजुट रहा है, आज भी एकजुट है, तो कहीं ना कहीं यूँ कहें कि हमारे संस्कार जो पूर्ववर्त जो हमारे शास्त्रों से मिले और उनको अपनाकर रेडियो ने और ज़्यादा प्रसारित किया। आज के समय में इतना यूँ कहें कि हर हाथ में एक मोबाइल के माध्यम से आदमी पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, रेडियो की प्रासंगिकता कितनी है आज, कितना महत्व और ज़्यादा जिम्मेदारी है आज के रेडियो के पास।
0: रेडियो की प्रासंगिकता और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि आज का जो संचार का युग है इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत प्रकार के अनर्गल बातें भी प्रचारित प्रसारित होती है। वहाँ किसी प्रकार का कोई नियमन नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या लिखता है, क्या बोलता है, उससे समाज में कई बार वैमनस्य और कई प्रकार के तनावों की स्थिति भी बनती है, लेकिन आकाशवाणी में सारी चीज़ें फिल्टर होके आती है, यहाँ किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं आता, किसी प्रकार के कोई दुष्परिणाम नहीं होते। मैं ये कह सकता हूँ कि आकाशवाणी से प्रचारित होने वाले, प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का कोई साइड इफेक्ट नकारात्मक रूप से नहीं आता है समाज पर, और जो समाज को चीज़ें उपलब्ध होती है ये एकदम से अपन कह सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में कि शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ है, इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक या इस प्रकार के जो दुष्परिणाम फसलों के साथ आते हैं उस प्रकार का मानसिक स्तर पर भी किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। शुद्ध सात्विक मनोरंजन, प्रेरक बातें और लोगों का मनोबल बना रहे, एक समाज के नाते, एक राष्ट्र के नाते हम अपनी निजी पहचान बनाए रखते हुए, अपने समाज की, धर्म की निजी पहचान बनाए रखते हुए भी हम अपने आप को कैसे एकजुट बनकर उभर कर देश का निर्माण करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और उस महत्वपूर्ण बात में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है, वो आज भी है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।
1: जो भी समाज होते हैं तो उनका अपना खुद का कल्चर होता है और जब समाज थोड़ा पढ़ लिख जाता है, यानी जिस तरह से भारत की प्रगति हुई है तो आज की तारीख में यूँ कहें कि शिक्षा घर घर तक पहुँची है और यूँ कहें कि आज नई जनरेशन में तो सभी पढ़े लिखे हैं और न सिर्फ पढ़े लिखे हैं और हम कहें कि उच्च शिक्षित भी व्यक्ति हमारे समाज में हैं। हम आज बात करें कि जो हमारे समाज हैं तो जो शिक्षा व्यवस्था हमारी है और यूँ कहें कि उसके माध्यम से जो कुछ उन्होंने ग्रहण किया है, क्या आप मानते हैं कि ये जो शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जो हम कहते हैं हम खुद को शिक्षित और तो कर लिया, क्या संस्कार भी उतने ही हम दे पाए उनको कि वो सारे देश को एक अच्छी तरह से यूँ कहें कि एक सभ्य व्यक्ति की तरह, व्यक्तित्व की तरह वो उभर के आए।
0: आज भी जो प्रतिस्पर्धाएं चलती है समाज में, जिस प्रकार के वातावरण बने हुए हैं, पुराने जमाने में आज से 30-40-50 साल पहले दो प्रकार का एक वर्गीकरण दिखता था। एक ऐसे लोग जो बिल्कुल सामान्य सीमित साधनों से आते थे, जिनके पास किसी प्रकार का संसाधन भी नहीं और उनकी मानसिक क्षमताएं भी उतनी विकसित नहीं हो पाती थी, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हुआ करते थे जो चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा होते थे, संपन्न परिवारों के, संपन्न जाति बिरादरियों के लोग, जिनका आर्थिक ढांचा भी मजबूत होता था। तो योग्य और अयोग्य व्यक्ति के बीच में प्रतिस्पर्धा होती थी और उसमें निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति को अवसर मिलता था। आज के जमाने में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि अब हिंदुस्तान में मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, हर व्यक्ति योग्य है। अब प्रतिस्पर्धा योग्य और योग्यतम व्यक्ति के बीच में है। आप बहुत सीमित अंतर से हार जीत का निर्णय होता है, चाहे खेल का विषय हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं का विषय हो, चाहे व्यापार की प्रतिस्पर्धा हो, चाहे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा हो, चाहे तकनीकी ज्ञान की प्रतिस्पर्धाएं हो, सब प्रकार में योग्यताधारी व्यक्ति तो है ही है, लेकिन उनमें से भी सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट, सबसे ज़्यादा सक्षम कौन है, उन व्यक्तियों को आगे आने का अवसर मिलता है। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि आज इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में आकाशवाणी ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब विद्यार्थी जीवन में कई बार होता है कि परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहा है वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता, तो हमारे शिक्षक हमको सलाह दिया करते थे, परामर्श देते थे कि आप लोग आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार को अपने नोटबुक में, डायरी में नोट करो, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे उद्घोषक बोलता है उसके साथ साथ आप भी उस न्यूज को लिखो, तो उससे हमारा ये प्रयत्न रहता था कि भई हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हमारे पेपर का कोई महत्वपूर्ण अंश हमसे छूटता नहीं था। तो यह कह सकते हैं कि उस समय भी प्रेरणा का माध्यम आकाशवाणी रहा है और आज भी ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित होते हैं जिनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ना किसी जाति बिरादरी के बारे में हल्का बोलते हैं, ना उनके बारे में सुनते हैं, सारी चीज़ें सकारात्मक रूप से, देश समाज का हित कैसे हो सकता है और यहाँ तक कि पूरी दुनिया का, सृष्टि का हित कैसे हो सकता है, केवल देश समाज की सीमाओं तक रेडियो की व्यवस्थाएँ या आकाशवाणी की व्यवस्थाएँ नहीं है, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण कैसे हो, संपूर्ण जीव जंतु का, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो, संवर्धन कैसे हो, पर्यावरण का, पेड़ पौधों का रख रखाव कैसे हो, ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक खेती पर कैसे ध्यान दिया जाए, ये सारे आयाम हैं तकनीकी ज्ञान से लेकर सामान्य ज्ञान तक का भी माध्यम आज भी आकाशवाणी बनता है। और जो लोग आकाशवाणी के कार्यक्रमों का श्रवण करते हैं वो निश्चित रूप से लाभ में रहते हैं, उनको अपनी प्रतिभा को और विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है।
1: बिल्कुल, और आकाशवाणी की कोशिश ये रहती है कि जो हमारे बीच में बहुत बड़े विद्वान हैं, किसी विषय के जानकार हैं, उनको आकाशवाणी के माध्यम से उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाया जाए। और इसमें हम बात करें, देखिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से रेडियो के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास किया और आज लगातार मन की बात
0: वो करते हैं माध्यम से।
1: तो उनको लगा था कि रेडियो एक सशक्त माध्यम है और इसके माध्यम से हम अधिकतम लोगों तक पहुंच सकते हैं।
0: निश्चित।
1: और हम अब बात करें, देखिए हमारे समाज के अंदर कुछ कलाकार होते हैं जिनको मंच नहीं मिलता, ऐसे बहुत सारे कलाकारों को आकाशवाणी ने मंच दिया है, न सिर्फ कलाकारों को बल्कि अपने क्षेत्र के विद्वानों को भी। तो उनकी वाणी जो समाज में पहुंची है, उनका प्रभाव क्या वास्तव में हमारे समाज पर पड़ता है?
0: कलाकारों को और प्रतिभाओं को केवल संरक्षण ही नहीं दिया, मैं तो ये कह सकता हूँ कि उन्होंने उस कला को भी संरक्षित किया, संवर्धित किया और प्रतिभाओं को भी संवर्धित करने में उनको अवसर प्रदान किए। आकाशवाणी के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं और उनके माध्यम से कलाकारों का एक मंच प्राप्त हुआ कलाकारों को, और उनको देश विदेश में भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, विद्वानों को भी अवसर मिलता है, विद्यार्थियों को भी अवसर मिलता है, व्यापारी से लेकर किसान तक को भी अपनी बात रखने का, अपनी बात सुनने का अवसर मिलता है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी उपक्रम है और इसके प्रासंगिकता तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा ही है आज की तारीख में, क्योंकि आज की तिथियों में जो समाज में एक प्रकार से कह सकते हैं सूचनाओं का भी अतिरेक हो गया है और प्रदूषण सूचनाओं का भी फैल रहा है, उसमें फिल्टर होना बहुत जरूरी है कौन सी चीजें सही है समाज तक पहुंचनी चाहिए। मैं कोई सेंसर की बात नहीं कर रहा हूं कि आप उसको बिल्कुल सरकारी नियंत्रण में लाके उनकी तक सरकार अनुमति दे वही बातें प्रचारित हो, लेकिन जो अनुपयोगी है जिससे देश समाज को हानि होती है, धर्म का, समाज का, राष्ट्र का अपमान होता हो या समाजों में विद्वेष फैलता हो जाति बिरादरियों में, ऐसी चीजें अन्य माध्यमों से फैल सकती है लेकिन आकाशवाणी के माध्यम से नहीं फैल सकती, और आकाशवाणी इन चीजों से बचने का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है।
1: हम अपने जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में एक बहुत बड़ा समाज है, हम कहें कि लंगा और मांगड़ियार
0: जी,
1: और हमारे आकाशवाणी जैसलमेर ने ऐसे बहुत सारे कलाकारों को आकाशवाणी के माध्यम से उनके संगीत को दुनिया भर में पहुंचाया, और आकाशवाणी एक बड़ा मंच है, यहाँ से जयपुर, जोधपुर, यहाँ तक कि आकाशवाणी का अपना ही दूरदर्शन, वहाँ भी उनको भेजा। तो आज जो हम कहें कि जैसलमेर का जो लोक संगीत है, जैसलमेर क्या पूरे देश निकल करके पूरी दुनिया के देशों में धूम मचा रहा है, तो इसमें भी क्या कुछ आकाशवाणी का योगदान रहा?
0: ये कला विलुप्त हो जाती अगर आकाशवाणी जैसे सशक्त माध्यम नहीं होते तो। प्रारंभ में इन लोगों को बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, जातिगत दृष्टि से लेकर आर्थिक ढांचा भी इनका ठीक नहीं रहता था, बहुत गरीबी में जीवन यापन करते थे। जाति का नामकरण भी मांगणियार ही रख लिया, मतलब कैसे भी करके ही अपना बेचारा गुजारा करते थे, लेकिन आकाशवाणी जैसे माध्यमों से सरकार की उस समय की भी वर्तमान सब सरकारों ने पुल मिलाकर इन कलाओं को प्रोत्साहित करने का ही काम किया है, तो आज जो ये देश दुनिया में थार का संगीत, थार का गीत, यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ के कार्यक्रमों की जो डिमांड है, जो मांग है, और देश दुनिया के लोग इस क्षेत्र को देखने के लिए आ रहे हैं, इतना फॉरेन एक्सचेंज होता है, इतना विदेशी मुद्रा का आगमन हो रहा है, देशी पर्यटक भी आते हैं, देशाटन की प्रक्रिया परंपराएं हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा रही है, तो उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, लेकिन उस कला का संरक्षण हुआ जो इस सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा उपलब्धि मान सकते हैं अपन, नहीं तो ये कुछ वर्षों में ये कला विलुप्त हो जाती। आज वो बड़े गर्व के साथ बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, भले ही उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि आज से 10, 20, 25 साल पहले उपेक्षित रही होगी, लेकिन आज वो दम ठोक के किसी भी बड़े तथाकथित रूप से किसी भी वीआईपी के साथ में अपना मंच शेयर करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। इवन यहाँ से कई कलाकार ऐसे पनपे हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्रीज में भी बहुत बड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है, तो ये मेरा ये मानना है कि इस मामले में आकाशवाणी का योगदान अतुलनीय है, नॉन कंपेरेबल।
1: ऐसे ही हम बात करें अपने शास्त्रीय संगीत की, जब फिल्मी गीत नहीं आए थे उस समय हमारे जो कहें शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम, ख्याल गायकी, जो परंपरागत जो लोकगीत होते थे उनके कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते थे, और जब फिल्म संगीत शुरू हुआ आकाशवाणी से तो कहीं ना कहीं वो संगीत, जैसे लोक संगीत की बात करें या शास्त्रीय संगीत की, तो उसके श्रोता कम होते चले गए और जो फिल्म संगीत के उसके बढ़ते गए, लेकिन आकाशवाणी ने हमेशा शुरुआत की, लोक संगीत के जितने कलाकार थे भारत में उनकी लाइव कंसर्ट कराई, उनकी रिकॉर्डिंग कराई, और आकाशवाणी से आज भी शनिवार और रविवार को आकाशवाणी संगीत सम्मेलन एक घंटे और डेढ़ घंटे का प्रसारित होता रहता है। तो शास्त्रीय संगीत के संरक्षण में भी आकाशवाणी आज भी भूमिका निभा रहा है, उनको संरक्षण दे रहा है, और वो बहुत सारी रिकॉर्डिंग हमारे आर्काइव में उपलब्ध है, चाहे पुराने हमारे यूँ कहे के शहनाई वादक जो रहे हैं बिस्मिल्लाह खान जी, और आज के जो शास्त्रीय संगीत के नए गायक उनकी भी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। तो हम बात करें कि आकाशवाणी ने अपने यूँ कहें कि पूरे ये 90 वर्षों के अंदर पूरे देश के कलाकारों को न सिर्फ मंच दिया और जो समाज है उनको शिक्षित प्रशिक्षित उनको संस्कार भी आकाशवाणी ने दिए हैं। और हम बात करें कुछ, जैसे कि जैसलमेर का जो जीवन हुआ करता था, आपका जो यादें हैं के प्रारंभिक और आज के कितना परिवर्तन आया है जब से आपकी यादें थी कि जैसलमेर में वो समय कैसा था जब आकाशवाणी तो 94 में यहाँ पे शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार का जीवन होता था?
0: उस समय का जीवन बहुत सरल हुआ करता था और भौतिक संसाधनों की तरफ लोगों का इतना दुराग्रह नहीं रहता था और संतोषी जीवन होता था। अपने उपलब्ध संसाधनों में अपना जीवन यापन करते थे, बहुत सहयोग करते थे, परिवारों में घरों में आना जाना मिलना बैठना सब होता था। आज का जो जैसलमेर हम देख रहे हैं, जिन्होंने दोनों टाइम का जैसलमेर देखा है, दोनों समय का जैसलमेर देखा है, उनको लगेगा कि आज जैसलमेर में विदेशी मुद्रा का प्रभाव ज़्यादा लोगों के दिमाग में आ गया है, क्योंकि अब जब डॉलर की कमाई आनी शुरू होती है तो डॉलर अपने साथ में और भी बहुत सारे दुष्प्रभाव लेकर आता है। ऐसा नहीं कि वो केवल अकेला ही आएगा। तो सरलता का जीवन बहुत जटिलता में बदलता जा रहा है और उससे बहुत सारी विद्रूपताएं भी बढ़ रही है। यहाँ क्राइम रेट बढ़ रहा है, किसी जमाने में थाने में कई कई महीनों तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, लोग पंचायती करके सारे मामले निपटा देते थे। आज तो क्राइम रेट जैसलमेर में अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी जिस गति से बढ़ रहा है वो ठीक नहीं है। और यहाँ पर प्रदूषण की भी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है, नहीं तो बहुत शुद्ध सात्विक सरल जीवन हुआ करता था। तो बहुत परिवर्तन हुआ है जैसलमेर में भी, और ये परिवर्तन तो संसार का नियम है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, तो उसे बचा नहीं जा सकता। लेकिन सकारात्मक परिवर्तन हो तो ज़्यादा उपयोगी और लोगों के लिए फायदेमंद रहता है, तो वो बातें तो आ ही रही है।
1: अच्छा, जिस शहर में आकाशवाणी केंद्र होते हैं वहाँ के युवाओं को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है
0: जी,
1: हमारे जैसलमेर के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? आकाशवाणी सबका है, युवा आए यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं, यहाँ पर वार्ताएं दे सकते हैं और बहुत सारा यहाँ से सीख करके अगले बड़े मंच की तरफ वो बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आकाशवाणी से निकल करके बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या लोक संगीत की बात करें। तो जैसलमेर के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, आकाशवाणी का फायदा किस प्रकार वो ले सकते हैं?
0: जैसलमेर के युवाओं से मेरा इतना ही आग्रह है कि जीवन की सार्थकता इसी बात में है कि हम अपने आप को समाज और देश के लिए उपयोगी बनाएं, परिवार के लिए उपयोगी बनाएं। तो सामाजिक रूप से जो आजकल दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं पर्यावरण से संबंधित या अन्य सूचनाओं के माध्यम से, तो उनसे बचते हुए ऐसे कार्यक्रम हमको सुनने चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों में सहभागिता रखनी चाहिए जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो। और उस हेतु आकाशवाणी एक बहुत उचित माध्यम बन सकता है भी, निसंकोच हमको हम लोगों को उसका उपयोग करना चाहिए, इसको श्रवण भी करना चाहिए, इसमें कार्यक्रमों में सहभागिता भी करनी चाहिए। जब भी अवसर मिले उस समय अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए हम इसको अपना माध्यम बना सकते हैं, जिससे समाज का भी भला होगा और अपनी भी प्रतिभा अपना भी मानसिक संतोष बढ़ेगा ही, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं।
1: ये जो 90 वर्ष आकाशवाणी ने पूरे किए हैं, आप क्या समझते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी, क्या वो उद्देश्य आकाशवाणी ने हासिल किए हैं या अभी और कोशिश करनी है इसी क्षेत्र में?
0: आकाशवाणी कोई एक उद्देश्य लेकर प्रारंभ नहीं हुई, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से उद्देश्यों का भी दायरा बढ़ता गया और आज की परिस्थितियों में भी आकाशवाणी को अपने आप को सर्वाइव करना है। बहुत सारी चुनौतियां भी है क्योंकि तकनीकी रूप से जो विकास हो रहे हैं उसके सामने आकाशवाणी को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए खुद को भी प्रासंगिक बनाए रखना, देश समाज के भी हित की सोचना, उसमें बहुत सारे आयाम आकाशवाणी ने प्राप्त किया है, लेकिन अभी बहुत लंबा चलना है, ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। अभी राष्ट्र निर्माण कोई एक दिन में नहीं होता या 150 साल में नहीं होता, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, समाज निर्माण अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसके लिए ऐसे संस्थानों का भी निरंतर अपने आप को पुष्ट करना, अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने से समाज का भी भला होता है, तो इसलिए इसकी उपयोगिता भी है और इसको अपने आप को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम भी बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि आकाशवाणी के सामने अभी और बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और कारण है कि जो मीडिया इस समय है उसके बीच में आकाशवाणी ही एक ऐसा माध्यम है जो सही सूचनाएं और सही जानकारी आकाशवाणी से मिल सकती हैं, तो उन सब के बीच में से आकाशवाणी की जो चुनौतियां हैं वो पूरे राष्ट्र निर्माण में और आगे भी चुनौतियां बनी रहेंगी, और आकाशवाणी मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इन चुनौतियों का सामना करते हुए एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए कोशिश करता रहेगा। और जो आपने सामाजिक उत्थान की बात की, आकाशवाणी का अपना बहुत योगदान रहा है और आने वाले समय में भी आकाशवाणी को कोशिश करनी है। और दोस्तों, आकाशवाणी @90 कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे थे पूर्व प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नागौरी जी, जो कि आज समाज की सेवा में लगे हुए हैं और जैसलमेर के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे श्रोताओं को आकाशवाणी के बारे में और समाज की जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद आपको भी।
2: आकाशवाणी @90

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो एट 90 आकाशवाणी जैसलमेर का। ये गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

दीपक संग नाचे, दीपक संग पतंग नाचे, कोई मेरे संग ना। आन मिलो सजना, आन मिलो सजना।

मिली शीतम से सब पनहारिया दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना अब आन मिलो सजना आन मिलो सजना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना से, ये गीत आवाज़ थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और इस गीत को संगीत सहाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अवतार से ही गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और इस गीत को संगीत से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

आता है होता है ये भी के जमी से भी कभी आसमान मिल गया।

मैं भी बुझा बुझा था अजनबी जमाना, अपना कोई न था, था अजनबी जमाना अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का

लगता है कि यहाँ मिल गया। एक भटके हुए साहिब को

0: गए हो तो ये लगता है कि यहाँ मिल गया, कि यहाँ मिल गया।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म हंसते जख्म से, ये गीत आवाज थी मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे कैफी आजमी के, और इस गीत को संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: वर्तमान है आज मौसम।
1: अभी आप सुन रहे थे लोफर फिल्म से ये गीत, आवाज थी मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जाने दुश्मन से ये गीत। आवाज थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे वर्मा मलिक के, और इस गीत को संगीत से ज्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक

0: और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचे। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: डिस्कशंस ऑल्सो
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सके।
1: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इम्पोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉन न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉन के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
2: लक्ष्य मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी के परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
6: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लैरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लैरिटी आती है। इससे एक देश को इमेज भी बहुत अच्छी मिली और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली है।
5: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
7: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
5: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
4: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
4: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
9: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबला

0: करने के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परना खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नई डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmin Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3.

सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला कुछ कम नहीं हो जे ताहिर मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं तेरी तू है जवां

उसके कदम चूमते थी जवानी, वो है शहर की रानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। हाय रामा, हाय रामा, हाय रामा।

उसके कदम चूमते ही जवानी, वो है शहर की रानी रामा, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा।

0: अब चिकने में तू है ऐसी पूरी
1: हाय दिखे जो मोहे तेरे प्यार की बुराई हो जाए शर्म तेरे पानी आवाज़
0: करते जवानी मेरी चाल मस्तानी
1: तूने कदर राजानी रामा हो रामा हो रामा।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म कारवां।

0: से ये गीत आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के, और इस गीत को संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: भारत जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी की ना सोचे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो
1: घड़ी,
0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का यह कार्यक्रम।

Soyna Saturn, I need a donor,

गरीबा राज कोयल रिहन की धीमी बोली कोयल मजीदी बागरी मरा राजे

बोलनी रे अनाथ रे जी मेलबो मारा रे ए तो हरी गई मीठी बोली कोयल कोयल जी बागोरी मोर

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम झलकी।

0: हैं क्या?
1: कौन है भाई?
0: सॉरी, मैं हूँ मलकानी गुप्ता जी। मैं
1: आइए आइए मलकानी साहब, कहिए सवेरे सवेरे कैसे तकलीफ की?
0: अरे बड़ी भाई साहब, आज संडे है नी, तो मिसेज ने कहा गुप्ता जी से पहले जाकर इनविटेशन मांग लो।
1: इनविटेशन? कैसा इनविटेशन?
0: बड़ी आपने टीवी खरीदा है नी, और आज संडे है, अब पूरी पिक्चर चलेगी नी तो हम लोग आ जाए नी, तो बड़ी आप हमको इनवाइट करो नी
1: क्या नहीं, मोस्ट वेलकम, आप जरूर तशरीफ लाए और भाभी जी को भी लेकर आए।
0: शुक्रिया भाई साहब, तो मैं चलूं नी, शाम को आऊंगा।
1: जी हाँ जरूर।
2: ए जी, कौन आया था सुबह सुबह?
1: अरे वो मेरे साथ मलकानी काम करता है ना, वही आया था, कह रहा था वाह भाई साहब, आपने बहुत ही नेक काम किया।

0: जो टीवी खरीद लिया। आज सारे मोहल्ले में आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। कह रहा था हम शाम को टीवी देखने आएंगे।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो आएगा ही, साथ में सारे मोहल्ले वालों को भी दावतनामा भेज दो। टीवी क्या खरीद लिया, सरदर्द मोल ले लिया।
0: अरे ये क्या कह रही हो, सिरदर्द तो बेचारे पड़ोसियों का है जो रात के 11 बजे तक छत पर खड़े खड़े टीवी देखने को चक्कर लगाते रहते हैं और हम यहाँ ठाट से सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं। आहा, भला हो टीवी बनाने वालों का, क्या लाजवाब चीज बनाई है, घर बैठे दुनिया की सैर कर लो।
1: हाँ, और घर का पूरा सत्यानाश, ना कोई पढ़ता है ना लिखता है, किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा है, घर की कोई सफाई ही नहीं होती, और उस पर आने जाने वालों के लिए चाय बनाओ नाश्ता बनाओ, घर एक अखाड़ा बन गया है, कोई चीज ठिकाने पर नहीं मिलती। बच्चों की तो खैर बात ही छोड़ो, तुम जैसे निठल्ले बड़े बूढ़े भी शाम 6 बजे जो अंदर जाते हो तो रात के 11 बजे तक बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हो।
0: देखो देखो भाई, अब जो हमें निठल्ला बूढ़ा कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम ही सोचो, टीवी हमने खरीदा है, हम ही इसे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, माल हमारा और गुलछर्रे उड़ाए पड़ोसी, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता।
1: लेकिन जब बच्चों का प्रोग्राम आता है तब तो बाहर आ जाया करो।
0: भाई वो क्या है कि अंग्रेजी के कुछ शब्द बच्चे समझ नहीं पाते तो उनको समझाने के लिए बैठना पड़ता है।
1: और वो जो महिलाओं का कार्यक्रम चलता है तब क्यों बैठा करते हैं?
0: वो क्या है कि हाँ भाई, ये देखते हैं कि आज की महिला ने कहां तक तरक्की कर ली है। अरे आज महिला एवरेस्ट चोटी तक जा पहुंची है, और सुना है अंतरिक्ष में भी तुम्हारा राज होने वाला है।
1: बातें बनाना तो तुमको खूब आता है। अच्छा ये बताओ, परसों शर्मा जी से क्या कह रहे थे?
0: शर्मा जी से क्या कह रहा था
1: बताऊं? तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था, यार शर्मा जी ये जो कार्यक्रम पढ़कर सुनाती है वो बड़ी खूबसूरत है।
0: वो क्या है कि वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। इस पर तुम इतना नाराज क्यों होती हो?
1: मैं खूब समझती हूँ, टीवी वाली खूबसूरत लगती है और मैं बदसूरत लगती हूँ। ठीक है मेरा फैसला भी सुन लो, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी।
0: सुनो तो सही, चली गई, भला है उन औरतों की अकल का, टीवी पर कोई सुंदर चेहरा दिखाई पड़े तो उसकी तारीफ से भी इन्हें जलन होती है, वहम की दवा तो हकीम के पास भी नहीं। उस दिन फिल्म स्टार की खूबसूरती की तारीफ क्या कर दी, घर भर में तूफान खड़ा कर दिया।
2: सारी रात घरवाली के पांव दबाता रहा पर वह नहीं मानी सो नहीं ही मानी।
0: भगवान खैर करे, ये टीवी कोई नया लंका कांड ना करा दे।
3: पापा पापा, आज मेरे सभी दोस्त टीवी देखने आएंगे।
0: क्यों, क्या इस शहर में सिर्फ हमने ही टीवी खरीदा है?
3: नहीं पापा ये बात नहीं है, वो तो एक तरह का रिगार्ड होता है। पापा हम कोई नई चीज खरीदते हैं तो लोग देखकर तारीफ भी तो करते हैं।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, आने दो आने दो।
3: और पापा रानी की भी सभी फ्रेंड्स आ रही है।
0: अच्छा वे भी आ रही है, बहुत अच्छे। अब तुम्हारी मम्मी से भी पूछ लो, उनके मायके से भी कोई आ रहा है या नहीं।
1: कोई क्या, सभी लोग आ रहे हैं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, पप्पू पापा से पैसे लेकर बाजार चले जाओ।
0: क्यों, बाजार क्यों?
1: मेरे मायके वाले पहली बार मेरे घर आ रहे हैं, कोई बिना खाए पिए थोड़े ही जाएंगे।
0: लेकिन तुम्हारे मायके वाले क्या तुम्हारे घर का यानी कि बेटी के घर का खा लेंगे क्या?
1: क्यों नहीं खाएंगे जनाब, ये 20वीं सदी है, पुरानी परंपराओं को अब कोई नहीं मानता। ज्यादा से ज्यादा खाने के बदले 10-5 रुपए पकड़ा देंगे और क्या।
0: अच्छे मायके वाले हैं तुम्हारे।
1: देखो जी मेरे मायके वालों को कोसने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें 7 बार दर्द हो तो बुलवाना, कौन निकम्मे बैठे हैं जो आएंगे, वो तो मेरी वजह से आ रहे हैं।
0: तुम्हारी वजह से नहीं, टीवी की वजह से आ रहे हैं। तुम्हें देखते देखते तो मुझे टीपी हो गई है।
1: क्या,
0: वो क्या है, मेरा मतलब है ठीक है या? आने दो आने दो।
4: पापा पापा अभी मुझे रास्ते में मुकुट अंकल मिले थे, कह रहे थे पापा से कहना कि आज हम सभी यार दोस्त टीवी देखने आ रहे हैं, घर पर ही रहना कहीं बाहर ना जाना।
0: अच्छा मुकुट मिला था, मेरे सभी यार दोस्त आ रहे हैं। भाई वाह मजा आ गया, कई बरस हो गए उनसे मिले, चलो इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। भाई इस टीवी ने आज स्नेह मिलन का आयोजन करवा दिया।
1: हाँ और यह स्नेह मिलन आज ही होगा, लेकिन इसके लिए मुद्रा मिलन का भी तो आयोजन करो। इतने सारे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था में घर के बजट का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। पप्पू हिसाब जोड़कर बताओ कुल कितना खर्चा हो जाएगा और कुल मिलाकर कितने लोग हो जाएंगे।
0: अरे भाई 150 खर्च भी हो गए तो क्या, आखिर मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है कि नहीं।
1: आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा श्रीमान जी।
0: अरे भाई सभी लोगों को खाना थोड़ा खिलाना है, ऐसा करना चाय और नमकीन से सबको निपटा देना।
1: आहा, चाय और नमकीन से निपटा देना, मेरे मायके वालों को भूखा थोड़े ही जाने दूंगी। भैया और भाभी तो नॉन वेज खाएंगे, बाकी लोग हलवा पूरी।
0: क्या हलवा पूरी?
3: और पापा मैं तो मेरे दोस्तों को डिनर पर इनवाइट कराया हूँ।
0: क्या
4: फिर पापा मेरी सहेलियाँ कोई भूखी थोड़ी ना जाएगी।
0: अरे बाप रे।
1: और आप अपने दोस्तों को भूखा ही भेज देंगे, शर्म नहीं आएगी, दोस्तों में नाक नहीं कटेगी।
0: ओहो नाक नहीं कटेगी, बनिए का हिसाब करते वक्त कौन सी बच जाएगी, वो लाला पैसों के लिए भरे बाजार में मेरी पगड़ी नहीं उछाल देगा।
3: पापा हमें सुन लो, सभी कुल मिलाकर 140 आदमियों का खाना बनेगा, इस पर 1000 रुपए का खर्च होगा।
2: मर गए, अरे ये टीवी देखने का प्रोग्राम बना रहे हो कि मेरी लुटिया डुबोने का।
1: लुटिया काहे डूबेगी, सभी लोग घर के ही तो हैं, बाहर का कौन है। फिर जब टीवी खरीदा है तो लोग देखने आएंगे ही।
2: देखो तुम मेरा मुंडन संस्कार मत करो, इतने खर्चे में तो मैंने शादी की थी।
1: तो ये क्या हो रहा है, ये आपकी दूसरी शादी पर ही तो खर्च हो रहा है।
2: दूसरी शादी? क्यों बच्चों के सामने मेरा मजाक बना रही हो?
1: मजाक नहीं बना रही, सच्ची में ये आपकी दूसरी शादी नहीं तो क्या है। टीवी नहीं खरीदी, सौत ले आए हैं मेरी।
2: सौत?
1: और नहीं तो क्या, 6-6 घंटे जिसके साथ बैठे रहते हो वो मेरी सौत नहीं तो और क्या है। इतना वक्त आपने मेरे साथ कभी बिताया था, है याद तुम्हें?
0: टीवी को अपनी सौतन बतला रही हो, भाई वाह महामाया तुम्हारा भी जवाब नहीं। पप्पू बाहर बोर्ड लगा दो, हमने टीवी नहीं खरीदी है और पापा कोई सौतन नहीं लाए हैं।

भाइयों और बहनों, आज की इस सांस्कृतिक संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई तो लीजिए हजरात, पेश है नाटक एक क्लर्क की मौत।

0: वाह क्या जोरदार नाटक है। अरे लगता है मुझे देखकर लिखा गया और सौभाग्य से दूसरी रो में बैठ पाया। साहब के खौफ दफ्तरी फाइलों की चिंता से दूर। कितना सुकून है यहां। वाह वाह नंदलाल वाह। तरह तरह की रोशनियों में घिरे हुए पात्र मंच पर तुम्हारे मन चाहे संवाद बोल रहे और इत्मीनान से कुर्सी पर पसरे हुए तुम इस माहौल का लुत्फ ले रहे। कितनी खूबसूरत लग रही है जिंदगी। अपने राजा तुम आप अरे ये आगे वाली रो में तो त्रिवेदी साहब बैठे।
1: अरे इतने बड़े अफसर और मेरे इतने पास
0: है? ये क्या वो अपने कोट की ऊपर वाली जेब से रोमाल निकालकर अपना गंजा सिर पोंछने लगे हैं?
1: अरे अरे लगता है मेरे छींक में से कुछ छींटे त्रिवेदी साहब के सिर पर जा पड़े हैं। अरे अब क्या होगा है? अब मुझे सर से माफी मांगनी चाहिए, जरूर माफी मांगनी चाहिए। अब मुझे माफ कर दीजिए सर, सर सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए।
2: ओफो यहां भी सर चुपचाप नाटक क्यों नहीं देखते?
1: लेकिन सर वो मैं कह रहा था।
2: शट अप नीचे हट।
1: लगता है सर गुस्सा हो गए और बात है भी गुस्सा होने की। अरे मेरी छींक से निकले छींटों की क्या औकात जो साहब के गंजे सिर को छू लिया।
3: एक्टिंग कितनी खूबसूरत थी।
4: और वो जो हीरो वाला था
3: कमाल,
4: बढ़िया मजा।
1: मुझे फिर से माफी मांगनी चाहिए, मुझे सर से फिर से माफी मांगनी चाहिए। अरे सर सर तो उठकर चलने लगे। सर सर सर सर वो
3: हेलो मिस्टर राय। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? आई एम सॉरी भाई, उस दिन आपकी पार्टी में नहीं आ सका। क्या करता मजबूर था, गवर्नर साहब ने एक अर्जेंट मीटिंग कॉल कर ली थी। अच्छा राव सर फिर कभी मिलेंगे, सी यू लेटर बाय।
1: सर सर सर सर ने मेरी माफी पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत नाराज लगते हैं, इस घटना को अपने मन में रख लिया उन्होंने। वो वक्त आने पर जरूर दंड देंगे, वक्त आने पर जरूर दंड देंगे, जरूर देंगे।

0: आ गए आप? कहिए कैसा रहा नाटक? अरे ये क्या, अच्छे भले नाटक देखने गए थे, ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? सूरत पे 12 क्यों बजे हैं? क्या नाटक अच्छा नहीं था?
1: नहीं राधा, नाटक तो बहुत अच्छा था, पर मैं देख ही नहीं पाया।
0: तो क्या बैठने की जगह नहीं मिली?
1: जगह भी अच्छी मिल गई थी राधा। अरे वो दीन बंधु जी है ना, जिनकी फाइल मैंने सरकवाई थी, उन्होंने मुझे आगे से दूसरी रो में ले जाकर बैठा दिया था।
0: फिर क्या बात हुई?
1: वो राधा मेरे आगे वाली रो में बस लगभग मेरे पास ही बैठे थे बड़े अफसर त्रिवेदी साहब, और राधा बात कुछ ऐसी हुई कि वो मुझसे नाराज हो, बहुत गुस्सा है मुझ पर।
0: पर बात क्या हुई?
1: बात तो छोटी है, गलती मेरी ही थी राधा, पर मेरी ही क्या गलती, इसमें ऐसा हो ही जाता है।
0: ओफो, कैसा हो जाता है? आखिर बात क्या है, कुछ बताओगे भी या नहीं?
1: बात छोटी नहीं है राधा, क्या ये तुम्हें कम बात लगती है कि त्रिवेदी साहब जैसा अफसर इस गरीब नंदलाल क्लर्क के खिलाफ कोई कदम उठाने की ठान ले?
0: अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए थी।
1: माफी मैंने मांगी राधा, मांगी, मैंने मांगने की बहुत कोशिश की, पर सर ने कोई ध्यान ही नहीं दी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है राधा, न जाने क्या गत बनाएंगे वो मेरी। क्रोध में चिंगारियां बरसाते त्रिवेदी साहब का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है।
0: अच्छा अच्छा, पहले चलकर खाना खा लो।
1: नहीं नहीं नहीं राधा, खाना तो क्या, मैं पानी भी नहीं पी सकता। राधा राधा, तुम नहीं समझ सकती इस नंदलाल की परेशानी। अरे राधा, कहीं मेरे छींकने से तुम्हारे चेहरे पर छींटे तो नहीं पड़े? I am sorry राधा, I am really very very sorry राधा, very very sorry राधा, राधा please बुरा मत मानना राधा, देखो देखो राधा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
0: क्या हो गया है आपको?
1: मुझे माफ कर
0: दो। I am sorry, इतनी सी बात के लिए माफी मांगे चले जा रहे हैं?
1: इतनी सी बात? तुम्हारी नजर में इतनी सी बात है कि क्लर्क के छींकने से उनके साहब के गंजे सिर पर छींटे पड़ जाए? मेरी तो आत्मा कांप रही है राधा, साहब से माफी मिले बिना मैं चैन से जी नहीं सकता, नहीं जी सकता।
0: अगर ऐसा है तो तुम अभी जाकर उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते? और फिर त्रिवेदी साहब देर रात तक ऑफिस में बैठते ही हैं।
1: है? हाँ ये ठीक है, मुझे जाना चाहिए, उनके माफ कर देने के बाद ही मुझे शांति मिल सकती है राधा। राधा मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ राधा, मुझे माफी चाहिए, मैं माफी मांगने जा रहा हूँ राधा, मैं जा रहा हूँ।

0: ये आ गया साहब का दफ्तर। सिर्फ त्रिवेदी साहब के चैंबर में लाइट है। चपरासी शायद चाय लेने गया है। मुझे अंदर जाना चाहिए। साहब तो किसी एल्बम की तस्वीरों में खोए लगते हैं।
1: रमेश कॉफी इधर रख दो।
0: सर सर वो कौन सर?
1: अरे तुम यहां इस वक्त?
0: सर सर रंगमंच वाली बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर। मुझे ध्यान ही नहीं था सर कि आप आके बैठे हैं। और सर बेध्याने में मैं भूल हो गई सर। यकीन मानिए सर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया सर।
1: यहां मुझे तंग करने चले आए। मिस्टर नंदलाल अपनी हैसियत मत भूलो और आइंदा बिना इजाजत के मेरे चैंबर में आने की गलती मत करना। बड़े 30 मार खा समझने लगे अपने आप को। नाउ गेट लॉस्ट, गेट आउट।
0: लेकिन सर वो माफी।
1: आज से गेट आउट।
0: सर सर अब क्या करूं?

मुझे लिखकर माफी मांगनी चाहिए। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ इधर इसी लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा होकर लिख लेता हूँ, 9 बजे तक साहब घर पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं उन्हें घर पर ही माफीनामा दूंगा। हाँ ये ठीक है। ये रहा पेपर और पेन कहाँ गया? हाँ ये रहा, ठीक है लिख लेता हूं। श्रीमान त्रिवेदी साहब, जीवन में अनजाने में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। मेरे जैसे तुच्छ लोगों से कभी कभी आपकी शार के खिलाफ कोई अपराध हो जाता है। उस छींक वाले हादसे के बाद मैं मानसिक यंत्रणा से गुजरते हुए अपने किए की सजा पा रहा हूं। आप महान हैं सर, निवेदन है कि इस गरीब नंदलाल की भूल को भुला। नहीं नहीं देखो क्या लिखा अब तक। ना ना ये ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 9:15 बज गए। हाँ मुझे उनसे रूबरू बात करनी चाहिए।

0: किनसे मिला है?
1: साहब से।
0: क्या नाम है
1: जी? नंदलाल।
0: नंदलाल, अच्छा अच्छा, तुम उधर कुर्सी पे बैठो, हम अभी साहब को बताता है। उधर बैठ, उधर।
1: बहुत अच्छा।
0: साहब, साहब, वो नंदलाल नाम का आदमी आया साहब, वो आपसे मिलना चाहता है साहब।
2: कौन नंदलाल?
1: सर,
3: ये यहाँ क्यों आया?
1: सर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सर। सर, ये फकत इत्तेफाक था कि ऐसा हुआ। सर मैं अपनी कलम की कसम खा के कहता हूँ सर कि मैं सोच भी नहीं सकता सर कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हो चुकने के बाद सर, अब जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मुझे चैन नहीं मिलेगा सर।
3: तुम
1: अपने मन में कुछ मत रखिए सर, प्लीज सर, कुछ मत रखिए सर। आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ सर, लेकिन प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।
3: समझ नहीं आता क्यों मुझे ऐसा परेशान कर रहे हो।
1: माफ कर दीजिए सर।
3: सुनो नंदलाल, बहुत सहन कर लिया मैंने अब तक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर में इस तरह घुस आने की?
1: नहीं सर,
3: मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल देने की जरूरत कैसे हुई?
1: नहीं सर, नहीं।
3: अपने पांव जमीन पर रखो मिस्टर, उड़ने की कोशिश मत करो। जानते हो तुम्हारी सर्विस कितनी सेंसिटिव? महज एक क्लर्क हो तुम, अगर तुम्हें अपने घर वालों से जरा भी प्यार है, जरा भी लगाव है, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और कभी मेरे घर में घुसने की हिम्मत नहीं करना। और सुनो, आइंदा इस तरह मुझे नजर आए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
0: शाह, साहब, वो नंदलाल नाम का आदमी आया साहब, वो आपसे मिलना चाहता है साहब।
2: कौन नंदलाल?
3: सर, ये यहाँ क्यों आया?
1: सर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सर। सर, ये फकत इत्तेफाक था कि ऐसा हुआ। सर मैं अपनी कलम की कसम खा के कहता हूँ सर कि मैं सोच भी नहीं सकता सर कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हो चुकने के बाद सर, अब जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मुझे चैन नहीं मिलेगा सर।
3: तुम अपने मन में कुछ मत रखिए सर, प्लीज सर, कुछ मत रखिए सर। आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ सर, लेकिन प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।
2: समझ नहीं आता क्यों मुझे ऐसा परेशान कर रहे हो।
1: माफ कर दीजिए सर।
3: सुनो नंदलाल, बहुत सहन कर लिया मैंने अब तक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर में इस तरह घुस आने की?
1: नहीं सर,
3: मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल देने की जरूरत कैसे हुई?
1: नहीं सर, नहीं।
3: अपने पांव जमीन पर रखो मिस्टर, उड़ने की कोशिश मत करो। जानते हो तुम्हारी सर्विस कितनी सेंसिटिव है? महज

क्लर्क हो तुम, अगर तुम्हें अपने घर वालों से जरा भी प्यार है, जरा भी लगाव है, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और कभी मेरे घर में घुसने की हिम्मत नहीं करना। और सुनो, आइंदा इस तरह मुझे नजर आए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे?

मुझे क्या हो गया? ओह, साहब कितने नाराज के, कैसे सहन करूंगा मैं, कैसे सहन करूंगा मैं? लगता है अंधेरे में फिसलने लगा हूं मैं। ये भागती हुई रोशनियां, भीड़ भाड़, शोरगुल, एक कतरा पर शांति भी नहीं है मेरे लिए। ओ, किसी तरह घर पहुंच जाओ बस। अरे ये क्या हो रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है? एक एक एक काला गोला सा सरकता महसूस हो रहा है अपने अंदर। ये विकराल भयावने साए लंबे लंबे टक भरते हुए मेरे आसपास, इन सायों की विशाल आकृति, एक एक चेहरा है, एक चेहरा है। इन सायों को देखकर मेरे अंदर सरकता काला गोला फैलने लगा है, फैलने लगा है। कहीं कोई नजर नहीं आता, कहीं कोई नजर नहीं आता। अरे ये शायद त्रिवेदी साहब का चेहरा है। हाँ हाँ, ये वही चेहरा है, ये वही चेहरा है, ये वही चेहरा है। सड़क पर बिखरते शोर, आती जाती रोशनियां, आती जाती रोशनियों से दूर मैं अंधेरे में डूबने लगा हूँ। मैं अंधेरे में डूबने लगा हूँ। डूबने लगा हूँ।

0: अरे यार क्या बात करते हो डॉक्टर, थ्योरेटिकली आपकी साइंस ऐसी कोई सिचुएशन विजुलाइज कर सकती है, बट आई डोंट थिंक वास्तव में ऐसा हो सकता है।
1: ऐसे कई केस देखे गए हैं जिनमें रोगी किसी भी खुशी या डर को अपनी सोचों में इतना एक्सपैंड कर लेता है कि एक्सेस हैप्पीनेस या दहशत से जो एक्साइटमेंट होता है दैट में इवन कॉज।
2: हम यार घूमने निकले हैं और आप दोनों फिलोसफी और साइकोलॉजी में उलझे हैं
3: और अपने साथ दो शरीफ आदमियों की शाम खराब कर रहे हो।
2: अरे वो फुटपाथ के पास कोई आदमी पड़ा है, चलो देखते हैं।
0: हाँ। अरे शक्ल सूरत से तो फुटपाथ का तो नहीं लगता, डॉक्टर जरा देखो तो।
2: ये है कि एक आदमी फुटपाथ पर पड़ा है, डॉक्टर साहब नब्ज देख रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं।
0: क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ सर?
1: जरा इसकी तलाशी लेना।
3: अरे तलाशी लेने में अपनी मास्टरी है, गृहस्थ जीवन के 2 सालों में ये असर श्रीमती जी का आ ही गया है। ये एक बटुआ है और 3 रुपए 40 पैसे की रेस गाड़ी, टूटा हुआ मरियल पेन और ये है एक एक चिट्ठी।
0: अरे कैसी चिट्ठी
2: दिखाना भाई,
0: लो लो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। लिखा है श्रीमान त्रिवेदी साहब, जीवन में अनजाने में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, मेरे जैसे तुच्छ लोगों से कभी कभी आपकी शान के खिलाफ कोई अपराध हो जाता है। उस छींक वाले हादसे के बाद।
2: छींक वाला हादसा क्या मतलब?
0: हा?
2: अरे अरे आगे पढ़ने दो, अभी पता चल जाएगा।
0: आगे पढ़ने दो,
2: पढ़िए पढ़िए। आगे लिखा है,
0: आगे लिखा है, उस छींक वाले हादसे के बाद मानसिक यंत्रणा से गुजरते हुए अपने

0: is dead.
1: सोमो, ये वैसा ही केस है जैसा तुम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कह रहे थे.
2: तो क्या?
0: जी हाँ, एक अफसर के खौफ से एक क्लर्क की मौत हो गई.
3: अफसर के खौफ से
4: क्लर्क की मौत?
3: राम राम.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झलकी। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म परिचय से ये गीत। आवाज थी किशोर कुमार की, गीत के बोल थे गुलजार के, और इस गीत को संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं फिल्म आंधी से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे आंधी फिल्म से ये गीत। आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत के बोल थे गुलजार के और इस गीत को संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार गुलजार के लिखे चुनिंदा फिल्मी नगमे। आइए सुनते हैं खुशबू फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे खुशबू फिल्म से ये गीत। आवाज थी किशोर कुमार के, गीत के बोल थे गुलजार के, और इस गीत को संगीत से सहाया था आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

फिर वही फुर्सत पे रात दिन फिर ढूंढता है फिर वही फुर्सत पे।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मौसम से ये गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की, गीत के बोल थे गुलजार के और इस गीत को संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म इजाजत से ये गीत। आवाज थी आशा भोसले की, गीत के बोल थे गुलजार के, और इस गीत को संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला की बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सके।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमार से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुडुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द मोस्ट रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held a talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the global south. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing the media after the talks, Secretary East Rodríguez Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. UN and Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the Northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to belt of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today, NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in Agarwood